0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

अगर हो इजाजत तो लेट मी विश यू बोल अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुरुवार 21 मई की सुबह हो चुकी है और 5 भी बज चुके हैं। प्यार भरा नमस्कार। ऑफ कोर्स इट्स योर राइज एंड शाइन ऑन रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, और प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। 5:13 हुए हैं, बस सरा बाहर गीतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 24/7 तो आप गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सुबह का टाइम होता है मूड को एकदम सेट करने के लिए, व्हाट बेस्ट देन अदर देन दीज सॉन्ग्स, एवरग्रीन सॉन्ग्स। सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वर ट्यून्ड, नीतू भी आपके साथ हैं और प्यारे प्यारे मैसेजेस का इंतजार। ऑन सैक कात नफ नफ दूज नफ कात 5499-1294, whatever you might be still tuned। सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो तो बस दिन भी बेहतर से बेहतरीन हो जाता है।
0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
3: आ गई रुत।

0: रात सुना कि हर बीती रात की अपनी कहानी होती है, बस यही कहती है। अब जब सुबह होती है, देखो मैं तो चली, अब नई सुबह हो चुकी है, अपनी जिंदगी नई शुरुआत से कीजिए।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: All right, 549-9294 पर आप सभी के messages के लिए thank you so much. And Asaj Hospital से connect हुए हैं Mr. Jaishan, थम्बा जीवन उमिरान अंगोटिया आकाश शर्वन राम देवा में बिन साथ में हैं। रेडियो मस्ती टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम पर होंगे सुबह को आज और अपार फैमिली खुशनुमा से गुड मॉर्निंग। ज्योति फ्रॉम शातु बिनागर, साथ में आपके पूरे परिवार आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली एंड यहाँ पर भी आपके मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको मोडाल भी ऐसे हैं हरक फैमिली, खास धीरज, आयुष, विधिशा, अश्विन, साथ में ज्योति एंड डियर वंस के नाम। गुड मॉर्निंग नीटू एंड रेडियो मस्ती टीम। गुड मॉर्निंग आपको अब्दुल एंड सायरा बानू, कैसे ठीक ठाक? वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी यहाँ पर शीला जी, लेस्पिरेंस ट्रेबुशे से और सभी लिसनर्स के नाम। गुड मॉर्निंग बोंजू और बस सरोज जी हैं कैथ बोन से, कहती है प्लीज़ गाना पूनम, शिया, उमेश, अर्शी, अम्बल, राज जैन एंड बस आपके पूरे परिवार एंड डियर वंस के नाम।

अभी तक तो मैं आपके नीजे हूँ और बिना दस्तक दिए तो आप तक पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि आप खुद ब खुद चले आते हैं इस महफिल के मेहमान बनने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, हैप्पी बर्थडे आपको मेधा राम सरन मौसी मीरा सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपको भी चंद्रानी चूलन फ्रॉम अनुष्का अवनी आरती हरीश और सजोशे से आपके पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार। एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम भी जीवन कूपन 64 इयर्स ऑलरेडी रुदेश एलेना दिसागन वस एंड माय वन एंड सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार।

गुड मॉर्निंग आपको भी। यहाँ पर है कौन? वेल प्रमीला जी, साथ निभाते हुए हमारे हम सफर बनी हुई है। थैंक यू सो मच। हेलो नीतू एंड RM2 टीम, गुड मॉर्निंग। अगला गाना बेटी रिया, अंशी, केशनी, चाची प्रेमिला, रामचंद्र, सभी के नाम फ्रॉम कविता एंड बर्टन परिवार, पॉजिटिव फ्लैग से। प्रणाम, कैसी है भाई सूरज शर्मा सजादा एंड पूरे परिवार। थियोले से 5499 1294 पर आपको भी गुड मॉर्निंग। मनीष अमर, राजा बानी जिसिक फैमिली है खुबलाल, रिविया चौपा से।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 36 मिनट हो रही है. बो को हाश टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. बस साथ निभाते रहिएगा थोड़ी देर में आपका होरोस्कोप.
3: जादूगर
2: ये है प्यार का जादू, गीतों का जादू, ओनली ऑन रेडियो मस्ती.
3: दिल जाएगा बच के कहां.
2: 3 साल हो गए हैं और वो भी आपके सिविल वेडिंग के लिए. अक्षय आपके नाम आपकी लवली वाइफ की तरफ से, सो आप दोनों को बधाइयां, है ना किरण?

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: और आज का दिन कैसा रहेगा आपका?
2: एरीज मेष राशि।
1: वेल, आज का दिन पुराने रिश्तों की मिठास और नई खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात यादों का खजाना खोल देगी। घर में नए मेहमान के आने से खुशियों की रौनक बढ़ेगी। बड़ों के साथ बिताया गया समय आपको उनके दिल की बात समझने का मौका देगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि मौसम का असर आपको कमजोर महसूस करा सकता है। बिजनेस में आपकी लंबी योजनाएं धीरे धीरे सफलता की राह पकड़ेंगी। यात्रा का प्लान आप बना रहे हैं तो बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: वेल, आज प्रॉपर्टी और निवेश के मामलों की में आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार लाभकारी साबित होगा। हालांकि घमंड या जल्दबाजी किसी काम को अधूरा छोड़ सकती हैं आप। मन में ईर्ष्या रखने से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं प्लीज।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: नई संभावनाएं और अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नई नौकरी का ऑफर उत्साह बढ़ा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी। नए कपड़े, मोबाइल या गैजेट जो है खरीदने का आप मन बना सकते हैं। वैसे मेहनत से पीछे हटना नुकसान दे सकता है।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज सोच समझकर कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नए काम में जल्दबाजी करने से बचें और हर व्यक्ति को पहचान कर ही भरोसा करें। नौकरी बदलने का विचार सकारात्मक परिणाम दे सकता है और बचत योजनाओं में निवेश करने का अच्छा समय है।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: वल, आज का दिन आपके लिए नई पहचान और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। आपके काम की तारीफ होगी, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। बिजनेस को आप आगे बढ़ाने में आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और लंबे समय से रुका सरकारी काम पूरा होने से आपको राहत मिलेगी।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज आपको ना आलस्य आपके लिए जो है सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कामों को टालने की आदत और आपको आगे परेशानी बढ़ा सकती है। जीवन साथी के साथ शॉपिंग या घूमने का प्लान मन को खुश करेगा, लेकिन खर्च सोच समझकर करिएगा। और किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: सफलता की राह पर आपके कदम तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया गया समय तनाव कम करेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सही जगह निवेश करने से भविष्य मजबूत होगा और आप अपनी सोच और लाइफस्टाइल में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: ऑलराइट, आज का दिन खुशी और मौज मस्ती से भरा रह सकता है। बड़ों के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में लापरवाही आपके साथियों को नाराज कर सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ लिया गया फैसला सफलता दिलाएगा।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज धन और समृद्धि में बढ़ोतरी के संकेत है। बिजनेस की योजनाएं उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकती है। नई पार्टनरशिप और घर खरीदने का सपना भी आकार ले सकता है और बस सपने देखना बंद मत कीजिएगा। वैसे संतान से किया गया वादा पूरा करना आपके लिए जरूरी होगा।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज मेहनत और नए आइडियाज आपकी सफलता की चाबी बन सकती हैं। बिजनेस में नई सोच आपको आगे बढ़ाने की मदद करेगी। जमीन जायदाद से जुड़ा पुराना मामला सुलझाने से

0: आपको राहत मिलेगी। वैसे परिवार में शादी विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और अपनों के साथ घूमने का प्लान भी आप बना सकते हो।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: लास्ट में आज पारिवारिक उलझने आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। संतान का व्यवहार भी चिंता का कारण

0: कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है, दैट्स व्हाई सतर्क रहें। एंड बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों को मेहनत का शानदार फल मिलेगा और आपकी तारीफ भी होगी। विशिंग यू अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 6 बजे हैं। वक्त हो चला है संक्षिप्त समाचारों का। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। पर्यटन के अलावा इस स्ट्रैटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर के अनुसार अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों के बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। माओवाकवा जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए। स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की ओर से एक वृहद अभियान की शुरुआत। विदेश समाचारों में भारत में आसमान से बरस रही आग भीषण गर्मी की

0: पीठ में उत्तर भारत दिल्ली यूपी में हीट वेव का अलर्ट और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमंत नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच वार्ता बड़ा फैसला एआई रक्षा और व्यापार में भारत इटली की बड़ी साझेदारी 20 अरब यूरो व्यापार लक्ष्य तय ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब कम अधिकार अमेरिकी सीनेट में क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित स्पोर्ट्स न्यूज खेल जगत से ये बेहतरीन खबर सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन खशल क्रुपफेनस्टाइन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड सेकंड से तोड़ा है 4 सेकंड से और उधर एस्टन विला ने एससी फ्रेबर्ग को 3-0 से हराकर यूएफए यूरोपा लीग जीत लिया संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद मौसम का हाल इस प्रकार है कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे थे और ये अब पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर कुछ वर्षा हो सकती है दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा फिर भी दोपहर बाद में देश के उत्तर में बादल विकसित होने लगेंगे मौसम अच्छा ही रहेगा दक्षिण की ओर से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी क्षेत्र में 2 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम 24 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम 28 एवं 31 डिग्री सेल्सियस के बीच सुबह 6:33 पर सूर्योदय शाम 5:39 पर सूर्यास्त
1: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre aux questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 23 mai pour la suite compétition débat climat à partir 8h30 à soir au MBCN et MBC SAT.
2: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

0: गम से तो हम भाग नहीं सकते हैं, खुशियां आपके दामन में आ रही हैं तो उनको आने दीजिएगा। हर मॉर्निंग एक नया मैसेज लेकर आती है ना, उस मैसेज को आप पहचानिए, उसको अपनाते चलिए एंड अपनी ज़िंदगी को आप खूबसूरत से बेहतरीन बना सकते हैं। 5499 1294 पर आपके मैसेजेस।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: It's a very good morning, aapko Mansukh Parivar, khas aapko Akash from Bombay. Hi, good morning. Aaj meri Princess Sanaya ka birthday hai. Princess aaj 5 saal ki hui hai. Blessings to you, beta. From mom, dad, aur bas pure parivar ki taraf se aapko bahut sara pyar and aashirwad. Next gana kin ke naam? इंदिरा जी और सिनी परिवार पिछी व्याजे से कविता विदुला मनीषा जनिता विजेता मालिनी स्वीति इंद्रानी ललिता मोहिता रोशनी मीता शालिनी अमर साइलेश एंड देव के नाम किसी को भूले तो नहीं है। नमस्ते जी और वेलकम इन माय किचन। ओके थैंक यू। वैसे बना क्या रही हो आज? आपकी लवली नीस भावना बगन जो रहती है मोंगू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। Best wishes going from coming from Papa Sandeep and Mama Reshmi, Kimi, Dadi hai, Sharda, Pupu Suya, Bihari Parivar, Pupa Ladev, Vicky Kirti, Avni cute hai, Vansh, Suya Bihari family all the way from Kunguma. Hello ji, namaste, Badwa Gabidesi, Tayakse, romantic gana, aapke naam, Anushan Khedo family from Motaba. गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग आपको भी दूतिका माइडिया रिव्या दिखर से एंड आपके पूरे रघुचना परिवार के नाम। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी नवीन मीथन फ्रॉम मामजल जान गुडलैंड्स, हैप्पी बर्थडे आपको। बेस्ट फ्रेंड सोना कालू की तरफ से बिंदिया एंड पूरे परिवार। गुड मॉर्निंग हेमा फ्रॉम

यहाँ से वेल आपके पूरे परिवार के नाम स्वीट निशिका यानेश पारुषी परिधि पृथ्वी एंड प्रिया एंड टू रेडियो मस्ती टीम थैंक यू एंड लवली गाना आपके लिए ललिता जीतन सरोज कुमारी बीना गीता ज्ञानती संजय विजेता विजय ललिता जीतन फैमिली है कहाँ से फ्रॉम लावाचुआ एंड हाई नीतू हाय गुड मॉर्निंग कल मेरा बर्थडे था ओके किसी ने विश नहीं किया ओ चले आज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको विश कर देती हूँ कविता तो हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस टू यू टू माय डियर नेहा परमा एंड फ्रदी हैं फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल ओ

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आपके प्यार ने सबको पागल कर दिया. ये गाना है इन द वॉइस ऑफ उदित नारायण. अभी के लिए कुमार सानू एंड साधना सरगम, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स. आपके नाम प्रेमिला जी फ्रॉम प्लेंडी पपाई, पति रंजीत, शोभा दी एंड आपके पूरे परिवार. मैं वीमा हूँ. कहाँ से वीमा? मैं हूँ फ्रॉम थुदुदुस. और आज कहती है आपकी बेटी सनाया का बर्थडे है. ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स. मामा पापा खुशहाल और पापा है पूजा, सब की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार. अ लवली मॉर्निंग टू यू कुमार एंड डेविडसन फैमिली. कैसी है प्यारी सिलीना फ्रॉम प्लान दे होश, आपकी प्यारी जिया. पति हैं राजीव एंड शिव शंकर, विक्रम परिवार एंड यानी कि आप कहते हैं कि विक्रम गेटिंग रेडी फॉर वर्क, सो बॉन कुराज टू यू बोल. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको माय डियर फ्रेंड. आपकी बेटी आज 23 इयर्स की हो गई हैं, रक्षिता रेखाई. एंड गाना आपकी तरफ से मामा रेखा, हेमा सॉरी, पापा राजेश, वंशिका, काशी, सन, मौदा बैसे, आपके पूरे परिवार. गुड मॉर्निंग जी, आप हैं मान और आपकी लवली वाइफ हेमा, कैथोबोन से आपके पूरे परिवार के नाम.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: 6:26 सारे छह बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद वेदिता आपके साथ जुड़ जाएंगी 7 बजे के बाद. नो वरीज. अभी के लिए हैप्पी 18th बर्थडे टू यू प्रिंस रुद्राक्ष लक्ष्मण.

मानव कारोलिन विमल वर्षी रविश प्रीशा लवशा की तरफ से ढेर सारा प्यार। गणाव के नाम हबी रवि, बेटी दूषिका त्वेषा फ्रॉम वीना एंड गंगा परिवार कहाँ से फ्रॉम मोताबा। ओके, जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टे वेल ट्यून्ड एंड नॉट टू फॉरगेट वंस अगेन पूरे समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे 6:30 बजे।

मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। पर्यटन के अलावा इस स्ट्रेटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर के अनुसार अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। मागोवाक्वा जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए। स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की ओर से एक वृहद अभियान की शुरुआत। भारत में आसमान से बरस रही आग, भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी में हीट वेव का अलर्ट। भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच वार्ता, बड़ा फैसला। AI, रक्षा और व्यापार में भारत इटली की बड़ी साझेदारी, 20 अरब यूरो।

0: व्यापार लक्ष्य तय। ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब कम अधिकार, अमेरिकी सीनेट में क्रॉस वोटिंग, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित। और स्पोर्ट्स न्यूज खेल जगत से ये बेहतरीन खबर, सावोरा इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन हाशल क्लॉपफेनस्टाइन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड 4 सेकंड से तोड़ दिया। और उधर एस्टन विला ने एससी फ्रेबर्ग को 3-0 से हराकर यूएफए यूरोपीय लीग जीत लिया। नमस्कार, एक बार फिर इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब समाचार विस्तार से। शुरुआत चिकित्सा के साथ। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। पर्यटन के अलावा इस स्ट्रेटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। पहले से ही मॉरिशस की कई उपलब्धियां हैं जिनसे इस उभरते सेक्टर को विकसित किया जा सके। ये नीति 3 प्रमुख पहलुओं पर टिकी हुई है, विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पियर ने शबनीस उर्जीर वाहिद अली को अतिरिक्त जानकारियां दी। विवरण पूजा सुकालू।
1: Cette vision-là s'inscrit dans une logique de durabilité économique et nous focalise beaucoup plus sur la valeur ajoutée que sur les chiffres des arrivées.
2: हमारी दृष्टि आर्थिक स्थिरता की दिशा में है। हम ध्यान इस बात पर देते हैं कि मात्र आंकड़े ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी मूल्यवर्धित सेवाएं क्या हैं। ये उच्च कौशल वाले रोजगार सृजित करने में मदद करेगा और हमारे स्वास्थ्य प्रणालियों को भी मजबूत करेगा।
1: Déjà, Maurice nous possède plusieurs atouts naturels et structurels. Nous avons une stabilité politique qui est reconnue.
2: पहले से ही मॉरिशस के पास कई प्राकृतिक और संरचनात्मक फायदे हैं। हमारे पास एक अत्यंत स्थिर राजनीतिक वातावरण भी है, सुरक्षित परिवेश और इलाकाई तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क भी है जो पर्यटन क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। नीति के 3 स्तंभ हैं, निजी और विशेषीकृत चिकित्सा अवसंरचना जिसमें आधुनिक क्लिनिक और उन्नत डायग्नोस्टिक केंद्रों में निवेश शामिल है। हमें अपने मानव संसाधन को विकसित करना जानना होगा। हमें अधिक डॉक्टरों, नर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की अपेक्षाओं को, बाजार की मांगों को पूरा कर सके।
1: Ils informent davantage de médecins, infirmiers, techniciens, spécialistes, afin qu'ils nous répondent les exigences que le marché demandait à l'international.
0: सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वाहिदा गुपी ने बताया कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों के बदलावों में चलते अन्य दवाइयों के पहुंचाए जाने में देरी हो सकती है जिससे कि सप्लाई चेन में अस्थायी रूप से रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने अंजलि सिरतन फुलचंद से बात की। विवरण याचना मिश्रा।
3: Nutina récemment, une molécule qui nutinamide est en petite quantité.
4: हाल में एक मॉलिक्यूल कम मात्रा में उपलब्ध था। सप्लायर को समय पर सामान भेजने में कठिनाई हो रही थी। हमने मरीजों को एक एक हफ्ते के लिए दवाई देना शुरू किया। हमें पता है कि 3 हफ्ते 1 महीने तक लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन अब स्थिति सुधर गई है। मधुमेह के लिए दवाई मिल गई है। सभी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में अब ये उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कम ही मिल रही हैं। सबको समझना चाहिए कि हम 100% आयात पर निर्भर करते हैं, भारत और यूरोप से। वे हमें बार बार बोलते हैं कि उन्हें खुद ही मध्य पूर्व संकट के कारण नए समुद्री मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं। समस्याएं हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द समाधान भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
3: Problème c'est qu'ils ont besoin de trouver une autre source de maritime pour être capable d'approvisionner. À cause le voie maritime ils ont une trajectoire inchangée. Nous peut trouver qu'il y a des trois soucis qui peuvent venir, mais nous peut essayer de prendre des mesures bien vite pour être capable de trouver une solution à ça.
0: स्थानीय स्तर पर कुछ अन्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फोमिली

0: इतना प्रोग्रेसिस्ट के नेता पोल बेरांजे का कहना है कि इस बार सरकार के पास पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आर्थिक गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने मूडीज और आईएमएफ की हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ये बयान उन्होंने बजट से जुड़े प्रेस सम्मेलन के दौरान दिया। कुणाल गुजी की रिपोर्ट पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: पोल बेरांजे ने इच्छा व्यक्त की कि बजट में मुद्रास्फीति और जीवन खर्च को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा,
2: Moody's dear Mauritius is making its first tangible progress on fiscal consolidation. Quand nous dire qu'il a marge de manœuvre budgétaire du gouvernement inaméliorée, bien meilleure que l'année dernière, inaméliorée, ça veut dire qu'il y en a certaines quelque chose qui nous capable faire, qui nous pas capable faire. Prend bonne mesure pour soulager au maximum bonne difficulté.
1: जहाँ तक पेंशन की बात है तो फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट ने उम्मीद जाहिर की कि 60 से 65 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आरक्षित इनकम सपोर्ट स्कीम को मजबूती देने के वास्ते अतिरिक्त कदम उठाए जाए। इसके अलावा पोल बेरांजे ने नेशनल पेंशन फंड में सुधार लाने की बात भी कही और साथ में निजी सेक्टर में पेंशन फंड के संचालन के लिए एक नई इकाई कायम किए जाने पर भी बात
2: की। Qui nous prévoit dans le budget qui vient, prévoit qu'il y ait une dépense à faire concernant pension. Que sa commission d'experts là vienne de l'avant pour proposer les détails d'un nouveau NPF réformé, restructuré au bénéfice de ban salariés.
1: ऑपरेशनल इकोनॉमी के स्तर पर कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन के लिए बंदरगाह में माइस्क और सीएमए सीजीएम के साथ निजी शेयर होल्डिंग पर विचार करने की मांग की गई, जो समुद्री परिवहन की दो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं।
0: मोगोवाकवा जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए हैं। देश के सबसे बड़े जलाशय का निर्माण 1885 में किया गया था और आज इसके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अहम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पहले से ही मिट्टी के कटने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की ओर से एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पौधे रोपे जा रहे हैं। नाचिया एनजीओ का सहयोग प्राप्त है। मकसद है जमीन को स्थिरता प्रदान करना और जल स्रोत सुरक्षित रखना। सजावट वाले पौधों की अहम भूमिका है, जो नदियों से आने वाले कीचड़ भरे पानी का सामना करने के लिए प्राकृतिक बांध कायम करते हैं। एक्टिंग डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ज़ियाद झुमका ने इस परियोजना पर जानकारियां दी। विवरण पूजा सुकालो।
3: Pendant saison de pluie, nous peinons assez l'espace vert pour ban de l'eau infiltrée. Un aspect ban mini forêt, c'est pour protéger nous contre ban calamité naturelle.
4: बारिश के मौसम में हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं होती, यानी ग्रीन स्पेस नहीं होती, जिससे कि पानी जमीन में समा सके। पौधारोपण से देश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकता है। उदाहरण है मोताइसिनो, जहां पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। हमने मोगोवाकवा इलाके में एक परियोजना भी शुरू की है। भारी बारिश के दौरान मिट्टी बह जाती है, इसी कारण से हमने पौधों को फिर से लगाना शुरू किया है। पहले ही 5,500 से 6,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 14,000 से अधिक पौधे भी लगाए जा चुके हैं।
0: अगर प्रकृति का संतुलन आज भी कायम है तो उसमें मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। फूलों से खेतों तक और शहद से खाद्य सुरक्षा तक, ये छोटी सी जीव कृषि और जैव विविधता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय ने कल रिज्यू में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सगा अनु याचना मिश्रा।
5: विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि और पर्यावरण क्षेत्र के कई प्रतिनिधि एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए, ताकि मॉरिशनों के दैनिक जीवन में मधुमक्खियों के महत्व को बेहतर ढंग से समझाया जा सके।
6: Non seulement c'est un métier, mais nous habitons vivre dans la nature.
5: हम प्रकृति में ही रहते हैं और मधुमक्खी

0: मक्खियों के साथ रहना सीखना चाहिए। 10 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मधुमक्खियों पर कोई कीटनाशक न डालें, उनके बिना जीवन ही नहीं। अगर ये लुप्त हो गई तो 4 साल बाद हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा। कुछ पौधों के धीरे धीरे गायब होने से इस क्षेत्र के पेशेवर चिंतित हैं। ये पौधे मधुमक्खियों को पराग यानी पोलन और रस प्रदान करते हैं। ऐसे पौधे बढ़ाने चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। निर्माण आदि के कारण मधुमक्खियों की संख्या काफी कम हो गई
1: है।
0: भूमि विकास, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि मधुमक्खियों का अस्तित्व सुरक्षित रहे। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी। हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। खेती वाली कई जमीन हम गंवा चुके हैं, लेकिन भूमि और कृषि की ओर वापस जाना मन से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप से परागण यानी पोलिनाइजेशन पर निर्भर हैं।
2: जिन लोगों को कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, वे अब से मेट्रो एक्सप्रेस में अपने गाइड कुत्ते को साथ ले जा सकते हैं। इस कदम का मकसद है उनकी आवाजाही को और आसान बनाना और साथ में उनके दैनिक जीवन में उनकी स्वतंत्रता को अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित करना। ये गाइड कुत्ते विशेष रूप से ट्रेंड कुत्ते हैं अपने मालिकों की मदद करने के लिए। उन्हें स्टेशनों और ट्रेनों में भी जाने की अनुमति होगी। लाभार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, मॉरिशस में एक अधिक समावेशी समाज के लिए। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार चौथे दिन दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा। कल यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के लिए येलो और इसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19-20 मई 2026 को इटली की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ये निर्णय 2023 के G20 शिखर सम्मेलन और 2024 के G7 सम्मेलन के बाद तेजी से मजबूत हुए संबंधों की निरंतरता माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय रणनीतिक राजनीतिक संपर्कों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके तहत नियमित वार्षिक शिखर बैठकें, मंत्री स्तरीय संवाद और संस्थागत स्तर पर समन्वय बढ़ाया जाएगा। साथ ही विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक विशेष तंत्र बनाने का फैसला लिया गया, जो 2025-2029 की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की समीक्षा और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। भारत और इटली ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। दोनों देशों ने वस्त्र, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिज, इस्पात और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। ईरान युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार कम करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन से पारित इस आशय के प्रस्ताव का समर्थन ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी किया है। लगातार 7 बार की नाकामी के बाद 8वें प्रयास में इस प्रस्ताव पर सीनेट की मोहर लगी है। CBS न्यूज के अनुसार सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विरोध में 47 सीनेटरों ने मतदान किया। हैरानी की बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का साथ दिया और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। और अब खेल जगत से ये बेहतरीन खबर। सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारे हमवतन हाशल क्रोफेंसकैन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड 4 सेकंड से तोड़ दिया। 1:59 और 82 हंड्रेड्स में फासला तय किया। इथियोपिया और कनाडा के खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। 1988 से शेलासी बालक के नाम

ये रिकॉर्ड दर्ज था। गाशेल कफेंस्टान की ये सबसे पहली प्रतियोगिता रही है और इस पर ये बेहतरीन प्रदर्शन। उन्होंने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की और मॉरिशस के लिए ये जीत हासिल कर पाए। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है। स्पोर्ट्स की और एक खबर, यूरोप में फुटबॉल की बात करें, कल रात एस्टन विला और एससी फ्रेबर्ग के बीच मैच खेला गया जिसमें एस्टन विला की जीत 3-0 से हुई। इस्तांबुल में इस तरह उसने यूरोपा लीग जीत लिया, 1982 के बाद से उसकी पहली यूरोपीय ट्रॉफी। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। कमज़ोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए थे और जो हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे थे, अब ये दूर होते जा रहे हैं, पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन दिन के दौरान मौसम मुख्य रूप से सुहाना ही रहेगा। दोपहर बाद में देश के उत्तर में कुछ बादल विकसित होने लगेंगे और मौसम अच्छा ही रहेगा। दक्षिण की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र सामान्य रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 24 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 28 एवं 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:33 पर सूर्योदय, जबकि शाम 5:39 पर सूर्यास्त।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी कादर को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: नंबर 94 रॉयल रोड पायोट कैटर बोर्ड में, नंबर 94 रॉयल रोड पायोट कैटर बोर्ड में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री गिरधारीलाल सुबल, श्री गिरधारीलाल सुबल जो श्याम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी माँ श्रीमती उमाती सुबल के घर नंबर 94 रॉयल रोड पायोट कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुलफेगिनों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। शुमेलिग्लीज प्लेन मायो में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड के श्री कमलेश्वर पतादिन, श्री कमलेश्वर पतादिन जो पते नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह सवा नौ बजे उनके घर शुमेलिग्लीज प्लेन मायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट अ क्वार्टर पास्ट 9 AM। शेक्सपियर रोड फोंजीसाक में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रुभमनी मोदेली वीराभद्रन, श्रीमती रुभमनी मोदेली वीराभद्रन पैदाशी नाम तंद्रायन जो अमावीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह दस बजे उनके घर शेक्सपियर रोड फोंजीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्त्रियोले के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 5 जस्मे स्ट्रीट बाचीमारी में, नंबर 5 जस्मे स्ट्रीट बाचीमारी में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद सरजू जो मनोज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विमल सरजू के घर नंबर 5 जस्मीन स्ट्रीट बाचीमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांचाब्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 PM। रुथ्वायाल शांति रोड रिश्ते में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्री सिडनी नंदेम वीरासामी जो नंदेम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ

थे आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी राधिका वीरा स्वामी के घर ओतवायार शांति रोड रिश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:01 PM। नंबर 43 अवेनी कास्केट पाल्मा कैटरबोर्न में

उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर नंबर 43 सावेनी कैस्केट पालमा कैचोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। विजया लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रेबिशे में अठहत्तर साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कलावती पुनित पैदाशी नाम बाचू जो मेश्वरी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उनके बेटे श्री प्रवीण पुनित के घर विजया लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रेबिशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। पेसिपा के मोताई ब्लॉश में 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब रफीक राहुनुत जो इमाम रफीक नाम से भी जाने जाते थे का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनकी बीवी बेगम फरीदा राहुनुत के मकान पिचपा के मोताई ब्लॉच से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए मोताई ब्लॉच मस्जिद ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए मोताई ब्लॉच का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे 1:30 PM। बुआ द्वाजो रोड पुत्रदो विलाज में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बेदवंती नेहोल पैदाशी नाम श्यामबा जो बेदाम नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री बकरित नेहोल के घर वादवाजो रोड पुतोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:11 AM। एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री धनेश्वर सामुज जो पो दीवान नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनके घर एक्स रेलवे रोड अपडागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टा सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:09 AM। आवेन्यू बुगैनविलिया में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री लालदेव जगानुत जो पौतनिया नाम से भी जाने जाते थे और पहले मौसलमा वीआरएस कास्कावेल रहते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी बेटी करुणा जगानुत रंजीब के घर आवेन्यू बुगैनविलिया तमागे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। रोतवायाल बुबासे में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसमती बेकारू जो बालिका पैदाशी नाम नरसिंह जो बालिका रामनारायण जो बालिका नाम से भी जानी जाती थी और पहले रामनारायण रोड कॉटेज रहती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे एरियन सन्स रोतवायाल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नंबर 14 बी डॉविन अवेनी कैटरबोन में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कामुशालाई रामांजुलू पैदाशी नाम रामसामी जो सरोजिनी नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके दामाद श्री पिल्ले मादे विनेश के घर 14 बी डॉविन अवेनी कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए समाते मोहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:11 AM। होल्टम अवेनी एल्विचा सैपिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्यागाराजन मर्दे जो
जुना मौदे नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शुक्रवार 22 मई को उन,

केयर थे कल शुक्रवार 22 मई को दिन के 12:30 बजे उनके घर हॉल्टन एवेन्यू एल्वेसिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्ताओं सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। रुथ रॉयल बोबासे में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री पुरन दौलत जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले नंबर 23 ग्लैडस्टोन स्ट्रीट रोसिल रहते थे। उनकी अर्थी कल शुक्रवार 22 मई को दिन के 1 बजे लाशा पहला होता तेलियन सन रुथ रॉयल बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक मेलुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। 800. You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। चाय वाय पिया, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, एक्सरसाइज किया, बताओ जी कैसे हो। सो वेदिता की ओर से वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग बीट। मैं हूँ आपके साथ और आपकी स्ट्रेस को बीट करने के लिए ढुशुम ढुशुम करके सबको बाहर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, देखो ना आज थर्सडे हो गया और 20 दिन तो वैसे भी निकल गए। सुबह के 7:12 मैं वेदिता आपका साथ देने के लिए आई हूँ मॉर्निंग में। आजकल देख रहे हैं कि लोग अपना स्पीड थोड़ा कम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना 60 के नीचे से अगर ड्राइव करो तो पेट्रोल बचता है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल इस पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है, स्लो ड्राइव करना चाहिए, आराम से आओ और थोड़ा घर से थोड़ा जल्दी निकल जाओ, वरना बाकी के लोग जो होते हैं ना वो पीछे बेचारे फंस जाते हैं। ओके, सो इट्स अ लवली ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थर्सडे का दिन है और हम आपके साथ हैं। बताइए कैसे हैं और आज का मूड कैसा है। ऑलराइट, एक बार फिर मैं रिमाइंड करती हूँ, जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें आज, या तो फिर आपके फैमिली या आपके आसपास में आप देख रहे हैं कि फैमिली फ्रेंड्स सर्कल्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उनका नाम और फ़ोन नंबर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सरप्राइज का टाइम होगा थोड़ी देर में। इट्स अ लवली ब्यूटीफुल मॉर्निंग लेडीज़, प्लीज़ मॉर्निंग में अपना ख्याल रखा करो, फिर भागा मत करो, थोड़ा सा सांस लो और ज़्यादा नहीं तो मेरे साथ थोड़े से ठुमके भी लगा लो। हम तो आए हैं आपका साथ देने के लिए और आपको थोड़ा सा डांस करवाने के लिए। चले भाई, नेक्स्ट गाना हमारे सभी लेडीज़ के लिए। नहीं भाई, आप ऐसा नाराज़ मत हो, आपके लिए भी गाना है। पहले हम माता के चरण छू लें और उनसे आशीर्वाद ले लें, तभी तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, है ना।
1: मॉर्निंग बीट चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: अरे ओ बचवा, टुकड़ टुकड़ कहाँ देख रहे हो? सोचा किसका जन्मदिन है?
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2
2: Radio Musti.
0: देखो भाई, मैं रोज सुबह कहती हूँ कि आप अगर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं तो मैसेज भेज दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उनको सरप्राइज करें तो उनका प्लीज़ नंबर तो भेज दो। आप कहते हो मेरे दोस्त का बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, और आप कहते हैं उसको सरप्राइज़ करो। अब मुझे सपने में थोड़ी ना उनका नंबर आएगा, नाम तो आप भेज देते हो, नंबर कौन देगा? आपको ही देना पड़ता है ना। तो प्लीज़ आप लोग उनका नाम दीजिए, तभी तो हम लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको सरप्राइज़ कर पाएंगे। जी हाँ, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपके लिए एक वाउचर है जो आपको कलेक्ट करना होता है आज नहीं तो कल, 2 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पर करना क्या है आपको, जिनका बर्थडे है आज, मैं कल की बात नहीं कर, परसों की बात नहीं करी हूँ, जिनका बर्थडे है आज आज आज, उनका नंबर, उन इंसान का नंबर भेजिए ना जिसका आज बर्थडे है, और साथ में उनका नाम, तो फिर हम उनको फ़ोन करेंगे ना, बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि आज का हमारा बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल कौन होने वाला है। फिलहाल म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से बर्थडे ऑफ द डे आपके लिए पेश है और नंबर का हमें इंतजार है।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
1: Hit music only.
3: Feels a musti.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: एक्चुअली हम मिलते हैं हमारे दोस्त के साथ जो हमारे साथ भी कुछ वार्तालाप करेंगे. कौन है चलिए जानते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर मिस्टर नवीन मितन.
3: हाँ मितन है.
2: हाँ जी मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ. एक्चुअली सॉरी टू कीप यू वेटिंग. यहाँ पर मुझे हाँ मुझे हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं एक्चुअली और हमें लोग चाहिए फूड टेस्ट करने के लिए. यू नो हम लोग एक कंपटीशन शुरू कर रहे हैं कुकरी का और हमें लोग चाहिए जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके और हमारे जो मिठाइयां हैं एक्चुअली वो टेस्ट कर सके. तो हमें आज हम लोगों ने बनाया है करेले की जलेबी. करेले की जलेबी एक्चुअली वो जो करेला होता है उसको हम लोग बेसन में डिप करके उसको जो गुड़ होता है ना उसकी सिरप में डाल के उसकी जलेबी बना रहे हैं. सो आप फ्री होंगे टेस्टिंग के लिए. आप आ सकते हैं.
3: हेलो.
2: हाँ जी आप टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं करेले की जलेबी.
3: कहाँ

0: फाइनल जीत पाया है जिसमें वो खेलता है, अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप, दो कोपा अमेरिका, एफए कप फाइनल और साथ में यूरोपा लीग। फ्रीबर्ग के खिलाफ फाइनल में एस्टन विला के स्क्वाड में लिवरपूल का खिलाड़ी अवे एलियट था, ऑन लोन है वो अभी एस्टन विला में, खेलने का मौका नहीं मिल रहा है पर वहां जाकर एक यूरोपियन मेडल मिल गया, कम से कम वहां उसे ये मेडल मिला, लिवरपूल में नहीं मिलता। बोर्नमुथ के स्टार खिलाड़ी एली कोपी के गोल पर ही सिटी के खिलाफ जो ड्रॉ मैच हुआ आर्सेनल चैंपियन बना। अब खबर है आर्सेनल कोपी को खुशी खुशी साइन करना चाहता है, कहते ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। माइकल आर्टेटा को बम्पर कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है आर्सेनल, बेस्ट पेड मैनेजरों में से एक होगा आर्टेटा और अगले सीजन काफी पैसे दिए जाएंगे नए खिलाड़ियों को साइन करने के लिए। इधर साउथम्पटन के स्पाइगेट मामला का फायदा उठाते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां से स्टार खिलाड़ी शी चार्ल्स को साइन करना चाहता है और काजेमीरो को साइन करने के लिए इंटर मायामी एकदम तैयार। आर्सेनल के खिलाड़ी कल सुबह 5 बजे तक एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर चैंपियन बनने का जश्न मना रहे थे। 22 साल बाद ऐसा हुआ। एबेरेटी एजे, डेक्लन राइस, बुकायो साका, जूलियन टिम्बर सुबह 5 बजे तक पार्टी करते रहे। ट्रॉफी पैरेड संडे 31 मई को होगा, शायद दो ट्रॉफीज के साथ। प्रीमियर लीग टाइटल तो हाथ में है, चैंपियंस लीग फाइनल के एक दिन बाद एक ट्रॉफी शायद और आ जाए, तो दो ट्रॉफीज के साथ पारेड ऐसा हो सकता है। इंडियन सुपर लीग में आज 4 मैच, इंतकाशी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से, जमशेदपुर ओडिशा, फिर मोहन बगान दिल्ली, पंजाब मुंबई। जर्मन बुंडेसलीगा प्ले ऑफ का फाइनल वुल्फबर्ग और पादियाबोन के बीच और कल कुप दे फ्रांस का फाइनल लॉन्स वर्सेस निस। इटली के सेरी आ में कल फ्लोरेंटिना का मुकाबला अटलांटा से होगा। क्रिकेट आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस फिर से गिर गए। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा केवल 15, हार्दिक पांड्या केवल 26 रन बना पाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है। गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अभी 7वें पोजिशन पर है, 12 अंक लिए टॉप 4 से 2 अंक पीछे। स्थानीय तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा एवं खेल मंत्री कल ऐलान किया कि इस साल भी इंटर स्कूल गेम्स होंगे, साथ में इंटर स्कूल कॉम्बैट गेम्स, स्विमिंग स्कूल फिर से खोले जाएंगे और फीफा वर्ल्ड कप के चलते एक फुटबॉल टूर्नामेंट लगेगी। साथ में कहा गया कि स्पोर्ट्स बिल लगभग तैयार है, बहुत जल्द नेशनल असेंबली में लाई जाएगी। और फाइनली एक और गुड न्यूज, एथलेटिक्स में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना। राशेल क्लॉफेनस्टाइन पहली बार मॉरिशस के नाम पर दौड़ी, इटली की मीटिंग इंटरनेशनल डे सावोना में भाग ले पाई। 800 मीटर में उसकी जीत हुई 1:69.82 यानी 1:59.82 क्रोनो रहा। जीत के साथ 800 मीटर का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गई। ये रिकॉर्ड 38 साल पहले 38 ईयर ओल्ड, इससे पहले ये रिकॉर्ड शेला सिबालक के नाम था। नाम याद रखिए, राशेल क्लॉफेनस्टाइन मॉरिशस की नई एथलेटिक्स की महारानी। सो एस्टन विला यूरोपा लीग चैंपियन, उनाई एमरी का 5वां यूरोपा टाइटल। अब अगले वेंसडे को, अगले बुधवार 27 मई को यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल, इस बार विला नहीं पैलेस होगा, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस रायो वालेकानो। और सैटरडे 30 मई 8 बजे चैंपियंस लीग फाइनल पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल। और भूलिएगा नहीं, वर्ल्ड कप स्पेशल बुलेटिन लेकर आएंगे थोड़ी देर बाद। टिल देन हैव ए वंडरफुल टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: A good beat for your morning show.
4: Come on.
3: Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम जी, आपका स्वागत करती हूँ जी। विदित आपके साथ हैं, आपके अपने रेडियो मस्ती पर प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग बीट। भाई आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है आज सुबह मुझे एक कॉकरोच मिला, हाँ, ज़मीन पे लेटा हुआ था, गाना गा रहा था, टरप टरप के इस दिल से आह निकल रही। मैंने बोला बेटा आह क्यों निकल रही? उसने कहा आपको पता है कल हम आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी तारीफ की, आपने बोला कि हम किसी को हार्म नहीं करते, तो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए घर आ गया। मैंने कहा घर गए तो नीचे जमीन पे लेट के ऐसे गाना क्यों गा रहे? बोला भाई आपके साथ बातें करनी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं आप तक पहुंचूं आपकी मम्मी आ गई और मम्मी ने स्प्रे लगा दी, इसलिए हम टरप रहे हैं। जाने मन आ बेचारा कॉकरोच हम तक पहुंचने से पहले टरप टरप के मर गया। चलो कोई बात नहीं, अगले आवर में मिलते हैं, फिर ज्यादा बातें होंगी, हो सकता है कि अगले आवर तक हमारा मूड भी बदल जाए। 8 बजे के समाचारों के बाद मिलते हैं।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
5: सरकार अफ्रीका हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देश के मरीज के आकर्षित करे खातिर टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के संगे भारी उम्मीद रखता थे। पर्यटन के अलावा ये स्ट्रैटेजी के मकसद है क्वालिफाइड नौकरी पैदा करे के और देश के स्वास्थ्य प्रणाली की बरियाई बनाए के। आगे से ही मॉरिशस के कई अनुपलब्धि बा जेकर से ई उभरते हुए सेक्टर के विकसित करा जा सकेला। ई नीति तीन प्रमुख पहलू पर टिकल बा, विशेष चिकित्सा मूल ढांचा के आधुनिक बनाए के, स्वास्थ्य कर्मचारी लोग के अतिरिक्त प्रशिक्षण दे के, आर्य कर संगे संगे पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टर के बीच सहयोग बढ़ाए के। सरकारी अस्पताल में डायबिटीज के नियंत्रित करे खातिर दवाई के कमी अब से काबू में बा। असल में स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वाहिदा गोपी बताइलन कि अस्पताल में इलाज के उपलब्धता के संगे स्थिति सामान्य पर ही लौट आल बा। फिर भी वो इस बात पर स्पष्टीकरण देलन कि समुद्री मार्ग के बदलाव के चलते दूसर दूसर दवाई के पहुंचाए जाए में देरी हो भी सकेला, जेकर से सप्लाई चेन में अस्थायी रूप से रुकावट पैदा हो सकेला। फ्रांस मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के नेता पॉल बेरांजे बोलन कि ई हालात सरकार के पास गल बरीस के तुलना में जस्ती आर्थिक गुंजाइश मौजूद बा। वो मूडीज आरआईएमएफ के हालिया रिपोर्ट के हवाला देते हुए बोलन कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखे के मिलत बा। ई बयान वो बजट से जुड़ा प्रेस सम्मेलन के दौरान कार करलन। मोगो वाकवा जलाशय के चारों दिने 5,000 पौधा आर 14,000 सजावट के पौधा बोअल कलबा। देश के सबसे बड़का जलाशय के 1885 में बनावल कल रहल आर आज एकर पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में अहम प्रयास करल जात बा। काहे कि अगर ये सही माटी के कटे के वजह से ये काफ़ी कमजोर पड़कर रहल। स्थिति में सुधार आने खातिर कृषि उद्योग मंत्रालय के वन विभाग सेवा के देने से एक वृहद अभियान की शुरुआत करल कल बा, जेकर तहत पौधा रोपल जात बा। नाचिय एनजीओ के सहयोग प्राप्त हुआ था। उद्देश्य है माटी के स्थिरता प्रदान करे के और जल स्रोत सुरक्षित रखे के। सजावट होला पौधा के अहम भूमिका रहेला, जो नदी के आय होला कीचड़ भरल पानी के सामना करे खातिर प्राकृतिक बांध कायम करेला। जे प्रकृति के संतुलन आज भी कायम बात एकर में मधुमक्खी के अहम भूमिका बाते। फूल से खेत ले कार शहद से खाद्य सुरक्षा ले एक पीति सुनजीव कृषि और जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि उद्योग मंत्रालय कालगेजुई में एक विशेष प्रदर्शनी के आयोजन करलक, जहां पर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के सुरक्षा के लेके जागरूकता बढ़ाई पर ही जोर देवल गल। जे लोग आदमी लोग के कमती लौकेला नहीं तो बिल्कुल ही नहीं लौकेला, तो उ लोग अब से

0: एक्सप्रेस में अपन गाइड कुत्ता के संगे जाय सकियंस एक संगे ले जाय सकियंस ई कदम के उद्देश्य है उलो के आवाजाही के आर आसान बनाए के आर एक संगे संगे उलो के दैनिक जीवन में उलोक के स्वतंत्रता के अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित करेगी। ई गाइड कुत्ता विशेष रूप से ट्रेन कुत्ता हवंस आर अपन मालिक के सहायता करे खातिन स्टेशन में आर ट्रेन में भी ले जाए के अनुमति हो। लाभार्थी लोग खातिन ये को बहुत बड़का कदम है मॉरिशस में को जस्ती समावेशी समाज खातिन। दूसरे देश के समाचार में पूरा उत्तर भारत आजकल भीषण गर्मी और लू के मार झेलत बा। उत्तर प्रदेश के बांदा लगातार चौथा दिन दुनिया के सबसे गर्म शहर में शामिल रहल। काल हियाँ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करल कल जबकि एकर से एक दिन आगे मंगर के 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करल कल रहल। वहाँ के क्षेत्रीय मौसम विभाग आवत एक सप्ताह खातिर कई स्थान पर ही भीषण लू के अलर्ट जारी कर देबा। आवत तीन दिन खातिर येलो पियर आर एकर बाद ऑरेंज अलर्ट जारी करल गल बा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19-20 मई 2026 के इटली के आधिकारिक यात्रा करलन। एकर दौरान दोनों देश अपन द्विपक्षीय संबंध के विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर ले बढ़ाए के ऐतिहासिक फैसला लेवल गल। ई निर्णय 2026 के G20 शिखर सम्मेलन और 2024 के G7 सम्मेलन के बाद तेजी से मजबूत हुए संबंध के निरंतरता मानल जात बा। दोनों नेता उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क के आर मजबूत करे पर ही सहमति जतैलन सा। एकर तहत नियमित वार्षिक शिखर बैठक मंत्री स्तरीय संवाद और संस्थागत स्तर पर ही समन्वय बढ़ावल जाए। इधर से भारत और इटली 2029 लेक द्विपक्षीय व्यापार के 20 अरब यूरो लेक पहुंचाए के लक्ष्य दोहरैलन सा। दोनों देश वस्त्र यानी कि लुगा स्वच्छ ऊर्जा सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल्स डिजिटल टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण खनिज इस्पात और बुनियादी ढांचा जैसन क्षेत्र में निवेश बढ़ावे पर जोर दिलन सा। ईरान युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार कमती करे के एगो प्रस्ताव पारित कर देवल गल बा। आर खेल जगत से संबंधित ई बेहतरीन खबर सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमने के हमवतन हासिल क्लब फ्रेंस्टाइन 800 मीटर के राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ दिले बा। उ अपन खुद के रिकॉर्ड 4 सेकंड से तोड़ दिलन 1:59 आर 82 सेंटियम के फासला तय करके। इथोपिया कनाडा के खिलाड़ी के भी पाछी छोड़ दिलन। 1988 से शीला सिबालक के नाम ई रिकॉर्ड दर्ज रहल। राशेल क्रॉफेंस्टाइन ई सबसे पहल का प्रतियोगिता में भाग ले लिया हवन आर एकर पर ई बेहतरीन प्रदर्शन भी रहल। उ एकर पर ही अपन खुशी और गर्व व्यक्त करलन कि मॉरिशस खातिर उ जीत हासिल कर सकलन। आर स्पोर्ट्स खबर में ही यूरोप में फुटबॉल के बात करी सा। कल रात एस्टन विला आर एससी फ्रीबर्ग के बीच मैच खेलल गल जेकर में एस्टन विला के जीत 3-0 से होल इस्तांबुल में। इस तरह से वो यूरोपा लीग जीत गैलक 1982 के बाद से ओकर ई पहल का यूरोपीय ट्रॉफी है। भोजपुरी के समाचार ही पर पूरा होगा ध्यान दिला जा बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre aux questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 23 mai pour la suite compétition débat climat à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBC Sat.
3: Morning Beat.
4: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: ससुराल जाएगी के बुलाता हो जुबेदा के लुते चलाल बा। चले मिलते हैं रजनी से, जानते हैं आज का मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे थे और ये अब पूर्व की ओर बढ़ रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर कुछ वर्षा हो सकती है। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, फिर भी दोपहर बाद में देश के उत्तर में बादल विकसित होने लगेंगे। मौसम अच्छा ही रहेगा। दक्षिण की ओर से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी क्षेत्र में 2 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 24 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 28 एवं 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:33 पर सूर्योदय, शाम 5:39 पर सूर्यास्त।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Une sélection de jus Fan Juice 1 litre à 79,95 € et 3 kg de lessive en poudre d'Ethos à 149,95 €. Et profitez-en, la fête du pain a déjà commencé chez Winners et ça continue jusqu'au 31. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
6: On est tous winners.
4: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
6: RM2
4: Radio Musti.
7: Protez-vous contre l'heptospirose. C'est une maladie dangereuse. Les transmettent à travers les rats, sat, les chiens, CF et BF. Ben symptômes comme douleur musculaire, douleur à la tête, gros la fièvre, frisson, vomissement, diarrhée et clazonis associés à sa maladie-là. Ben symptômes-là, ils apparaissent en 2 à 30 jours. Pour protéger contre sa maladie-là, pas besoin de les manger découvert. Protégez-vous ban aliments contre ban les rats et les autres onzeurs. Protégez ou la main, les pieds, les yeux et néné avec ban équipement comme les gants, bottes, masques et lunettes spéciales, surtout si vous travaillez aux animaux et accumulation de l'eau. Pour plus de détails sur leptospirose, contactez le ministère de la Santé et Bien-être, le 89 24. C'est un communiqué ministère de la Santé et Bien-être.
6: RM2
4: Radio Musti.
6: Morning Beat.
8: Oh God, one more remix.
6: A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musti in the mix.

0: Avant tes défis, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: लाइफ में हर किसी को खुशी की तलाश है। कुछ ये सोचते हैं कि भाई जब बड़ा घर आ जाएगा तब खुशी मिल जाएगी, कुछ सोचते हैं कि जब बड़ी गाड़ी आ जाएगी तब खुशी मिलेगी, कुछ लोग सोचते हैं कि लॉटरी लग जाएगी तब खुशी मिलेगी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें प्रमोशन मिल जाएगा तब खुशी मिलेगी। सच्ची बताइए, आपको खुशी कब मिलती है? आपके लाइफ में आप लव्ड, खुश कब फील करते हैं? जब आपका मन शांत होता है, जब आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो रोज़ के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप अप्रिशिएट करते हैं, चाहे घर में, चाहे काम में, चाहे किसी गाने को सुनकर या किसी से बात कर कर। हैप्पीनेस रियली काउंट्स। एक जेन्युइन स्माइल ना मूड को अपलिफ्ट करता है, एक छोटा थैंक यू रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है, एक पीसफुल थॉट आपका स्ट्रेस कम करता है, और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी को चाय पिला दी, किसी को हेलो बोल दिया, किसी की हाल पूछ ली, ये आपको डबल हैप्पीनेस देते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं। एक मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है ना, आपकी लाइफ को और भी ज़बरदस्त बनाता है। जितना ज़्यादा आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होगी। तो आज किसी को खुश करने की कोशिश कीजिए, आप किसी को स्माइल देने की कोशिश कीजिए, आज किसी को थैंक यू बोल के देखिए, फिर देखिए कैसे आपको अच्छा अच्छा और हैप्पी फील होगा।
0: Avant tes défis, de longs shifts, de premiers pas qui capables sont toujours dit, il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il y a un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe.

0: yes, dedicating this one for Shyam and Preeti, unke pyare se bete Lovneet ke liye taiyar ho rahe hain kaam aur school ke liye. And yahan par Rakhi ko kahenge good morning and lots of love to Nina and Dinesh jo is samay drive kar rahe hain. Unhone mere liye ek smile bheja hai, so thank you for that smile. एक छोटी सी स्माइल जिंदगी बदल सकती है किसी की, उनका दिन बदल सकता है, क्योंकि जब आप किसी का पल बदल सकते हैं तो उनका दिन बदल देता है और उनकी लाइफ बदल जाती है ना. कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारी एक छोटी सी स्माइल किसके चेहरे पे कितना स्माइल, कितनी खुशी ले आए. सो गिव मी योर बेस्ट स्माइल. और हमेशा कहती हूँ ना कि रोज 10 मिनट के लिए स्माइल करो, स्माइल करो 10 मिनट के लिए होल्ड करो और फिर उसके बाद स्माइल को पूरे दिन एंजॉय करो. इसी के साथ चलिए अरविंद से मिलने का टाइम भी हो गया है.
1: Get ready for the biggest World Cup ever.
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर. एक के बाद एक स्क्वाड अनाउंस किए जा रहे हैं. अब तक बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, केप वर्दे, क्रोएशिया, कुरासाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, फ्रांस, आईटी, आइवरी कोस्ट, जापान, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, स्कॉटलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और चुनिजिया के स्क्वाड फाइनलाइज हो गए हैं. और आज हम बात करेंगे ग्रुप आई को लेकर. सो ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे हैं. फ्रांस के लिए ब्लू दो बार वर्ल्ड चैंपियन 1998 और 2018 में,

पिछली बार रनर अप पेनाल्टी पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। इस टीम में ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ, किलियान एम्बापे, एंगोलो कांते, उस्मान देम्बेले, माइकल ओलीजे, गोलकीपर माइक मैग्नन, विलियम सालीबा, उपामेकानो, कुनाते, कुंडे, लुकास जी, चुआमेनी, डेजिरे डुए, रोयान चर्की, मातेता आदि नामी खिलाड़ी हैं। इनसे बच के रहना होगा, इस टीम से फिर से डरना होगा। मुर्गा अभी तक जवान है, बलवान है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सेनेगल की टीम वर्ल्ड कप में फोर्थ अपीयरेंस, 2002 में क्वार्टर फाइनल तक जा पाई थी। हाल ही में अफ्रीकन चैंपियन बनी थी सेनेगल की टीम, पर बाद में मोरक्को को चैंपियन घोषित किया गया। सेनेगल में साडियो माने, कालिदू कुलीबाली और एडवर्ड मेंदी जैसे खिलाड़ी हैं। इराक वर्ल्ड कप में दूसरी बार 1996 के बाद 2026 की प्लेयर एमन हुसैन और अली यसीम। नॉर्वे फोर्थ अपीयरेंस वर्ल्ड कप में, इस टीम को इस बार यूरोप मोस्ट फॉर्मिडेबल गोल्डन जेनरेशन का नाम दिया गया है। क्वालिफिकेशन में अपराजित, फ्लॉलेस, 8 विंस, इटली को भी नहीं छोड़ा। नामी खिलाड़ियों में मार्टिन ओडेगार्ड टीम का कप्तान, साथ में अर्लिंग अलॉन इनका गोल स्कोरिंग मशीन, अलेक्जेंडर सोलोफ, योगन स्ट्रांड लॉसन, एक्सप्लोजिव अटैकिंग फ्रंटलाइन नॉर्वे के लिए। सो ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे। काउंटडाउन जारी है, बचे हैं केवल 21 दिन। चलो वर्ल्ड कप की ओर।

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: रेडियो मस्ती पर मैं विनीता आपका एक बार फिर से वेलकम स्वागत करती हूँ।

0: हूँ, कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ पहुँची, कहाँ पर पहुँच गए। वेरी गुड। ये स्माइल जो आपने मुझे दिया था ना अभी 10 सेकंड का, इसको बरकरार रख रहे हो, जानकर अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या पता ये स्माइल लाफ्टर में बदल जाए जब आपको पता चले कि आपने जीत लिया इनाम। रॉजर्स कैपिटल के साथ खेलेंगे हम और आपको मौका मिलेगा जीतने का इनाम। डोमिनोज पिज्जा की तरफ से 1000 रुपीज का एक वाउचर है। यमी यमी पिज्जा खाएंगे, यस, और पार्टी करेंगे। चलो जी, तो आपके लिए सवाल है, नेम वन प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला। नेम वन प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बाय एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला। आपको मुझे सही जवाब देना है 5491294 पूरे नाम और पते के साथ।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Tout kapavatan. L'ouvrage mangé, bois sommeil kapavatan.
4: Everything can wait. Watch all 104 games live on Supersport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on with Canal Plus. Until the 21st of June, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canal Plus stores and till shops and canalplus.com.
1: RM2
2: Radio Musti. RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musti.
2: अमिया से आम हुए डार्लिंग तेरे लिए, क्या बात है, क्या गाना है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। 9:15 बज गए हैं, यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपके अपने मॉर्निंग बीट में। हमने किया था आपसे एक सवाल, बस एक सवाल हमने पूछा था, नेम वन प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप नूला आपके साथ ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, साउंड बार, ओवन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, किचन हुड्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने तो टीवी खरीद लिया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमें सही जवाब मिल गया है, सही जवाब देने वाली हैं ये है लता बिसेसर। क्या बात है, इतने खुश हम पहले नहीं हुए। लता जी कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपने खेला है रॉजर्स कैपिटल के साथ, जहां पर आपको मिलेगा मौका जीतने का 1000 रुपए का एक वाउचर। वो भी आप जाएंगे डोमिनोज पिज्जा, आप खाएंगे और हमें याद जरूर करेंगे, ठीक है। आपका वाउचर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोग ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स में नूला आपके साथ बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, साउंड बार, ओवन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, ओ माय गॉड, एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, वो भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन लकी ड्रॉ के बाद विनर तो लता जी ही बनी, तो कंग्रेचुलेशंस आपको। चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हाउ डीप इज योर लव। आप बहुत प्यार से खेल रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एंड थैंक यू सो मच। सो अगला गाना आप लोगों के नाम डेडिकेट करते हुए मैं आपको बता दूं, ये था गेम रॉजर्स कैपिटल की ओर से और रॉजर्स कैपिटल होल्ड्स अ लाइसेंस फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन।
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a musti.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: और ये रास्ता पहुंचेगा सीधा म्यूजिक की दुनिया की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे रजनी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं चिकित्सा के साथ है। जी हाँ, मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है सरकार। अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही हैं। इस तरह पर्यटन के अलावा इस स्ट्रैटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। पहले से ही मॉरिशस की कई उपलब्धियां हैं जिनसे इस उभरते सेक्टर को विकसित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वाहिदा गोपी ने बताया कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों के बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। माशिकोज में जलाशय के चारों ओर 5,000 और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए हैं। देश के सबसे बड़े जलाशय का निर्माण 1885 में किया गया था और आज इसके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अहम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पहले से ही मिट्टी के कटने के कारण काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। इस तरह स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की तरफ से एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर, रुख करते हैं सबसे पहले भारत। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार चौथे दिन दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहा। कल यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत में ही रहते हैं, महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज तड़के भीषण आग लग गई। इस भयानक आग की चपेट में आने से एक दमकल कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि अन्य दो दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। जॉर्जिया के अटलांटा हिल्स और एमरी में राष्ट्रीय मौसम सेवा अचानक आई बाढ़ की चेतावनी जारी रख रही थी। कल जारी एक एडवाइजरी में कहा गया था कि बाढ़ की ये चेतावनी कल रात प्रभावी रहेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर बाढ़ के कई डराने वाले वीडियो सामने आए हैं जिनमें पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई गाड़ियां बीच सड़क पर फंसी हुई नजर आई। और स्पोर्ट्स न्यूज़ में सावुना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन राशेल क्रोफेंस्टाइन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जबकि यूरोप में फुटबॉल की बात करें तो कल रात एस्टन विला और एससी फ्रेबर्ग के बीच मैच खेला गया जिसमें एस्टन विला की जीत 3-0 से हुई। इस तरह उसने यूरोपा लीग जीत लिया। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: स्वागत है आप सभी का नॉबिज को नॉमिनेट और मैं विकास आपका साथ दिमाने के लिए बिल्कुल रेडी रेडी और स्टडी लेट्स गो जो होना है होने दो। हाँ जब तक आपने अपनी प्लानिंग कर ली थोड़ा सा काम कर लिया बिल्कुल तैयारी कर ली तो फिर सब कुछ ठीक ही होने वाला है राइट। ये है योर मस्त मॉर्निंग शो। थोड़ी देर में मस्ती जारी। अरे गाने की बारी।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा, कई चीज़ होती है जहाँ पर आप इंतजार करते हैं कि कब मिलने का मौका मिलेगा, वो एक्साइटमेंट रहती है, कुछ ऐसे ही होता है अपना। गानों के साथ हमें पता है कि आप भी जुड़ गए हैं और फिर जो रिश्ता है ना, जो मैजिकल म्यूजिकल कनेक्शन है वो बन गया। ऐसे बढ़िया, और क्या बात जवाब है हमारे साथ। रेडियो वेव्स पे उड़ते उड़ते हम आपके घर में पहुंच चुके हैं, या फिर ऑफिस में, या फिर गाड़ी में संग संग चल रहे हैं। भाई ये तो कहानी है, म्यूजिक की कहानी ऐसी ही चलती है भाई, हर रूप रंगत में बदलती है लेकिन संग चलती है। राइट, सो ये जो घंटा है इसमें हम बात करते हैं हाउस होल्ड डेको टिप्स के बारे में। और वहीं पर टू ऑल द लेडीज, अभी जो घर पे हैं, काम कर रही हैं, आपको भी एक साथी तो चाहिए ना। बस म्यूजिक के तौर पर आ चुका है 9 से 12, ये चलने वाला प्रोग्राम हमारा मस्त मॉर्निंग शो। मस्त मॉर्निंग शो बोले तो MMS मस्त मॉर्निंग शो, इसमें भेजिए अपने SMS समझ गए आप। वहीं पर कुछ फोन्स भी लेंगे, साथ में बात करेंगे, जरूरी है कनेक्शन स्टैब्लिश करना। बाकी आप बताइए कि आपके साइड पर क्या हो रहा है, मौसम के हाल चाल है, किसी को अचुम। मैं जानता हूँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जब आप बीमार भी हो, काम भी करना, सो उन सभी को बहुत सारा साहस मिले, आगे ऐसे ही बढ़ते रहें म्यूजिक संग संग। तो थोड़ी देर में आपकी राशियाँ कुछ और मस्ती चलेंगी सीधा आपके पास।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: भाई क्या करें, प्यार बार बार हो ही जाता है म्यूजिक से। International listeners, hello to you as well.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: तारीफ पे तारीफ। नहीं, वो तो तारीख था। तारीख कौन सी? हाँ, 21। अरे भाई, थर्सडे का दिन आ गया है, यानी हफ्ता धीरे धीरे हो रहा है खत्म, लेकिन ऐसे ही मिलते रहेंगे आप और हम रेडियो के जरिए।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: चलिए साहब, जानते हैं आपकी सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं वेद।
2: एरीज, मेष राशि।
0: भाई, आज का दिन होगा पुराने रिश्तों में मिठास डालने का। वैसे तो खुशियां लेकर आता ही है पुराने दोस्तों से मुलाकात, यादों का खजाना। ओहो, मन में आएगा कोई गाना, ये दोस्ती। घर में नए मेहमान जब आएंगे तो खुशी और रौनक लेकर आएंगे। माता पिता के साथ बिताया गया समय आपको उनके दिल की बात समझने का मौका देगा।
2: टॉरस, वृषभ राशि।
0: भाई देखिए, ऐसा कि सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि मौसम का असर आपको कमजोर महसूस करा सकता है। हाँ, कुछ ऐसा हाल। क्या कर रहे हो? सच बोलो, हो गया फ्लू? बिजनेस में लंबी योजनाएं धीरे धीरे सफलता की राह पकड़ेंगी। यादा का प्लान बन रहा है तो बड़ों की सलाह लेना फायदेमंद होगा।
2: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: डिस्को करती रहे। हाँ, लेकिन डिस्को के साथ साथ डांस। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार लाभकारी साबित हो सकता है, हालांकि घमंड या फिर जल्दबाजी किसी काम को अधूरा छोड़ सकता है, इसलिए मन में ईर्ष्या रखना बंद करें, सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएं।
2: कैंसर, कर्क राशि।
0: नई नई संभावनाएं और अवसर आपके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रही है। नॉक नॉक, दरवाजा खोलिए, दिल की बात बोलिए। नई नौकरी का ऑफर उत्साह बढ़ा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी। नए कपड़े, मोबाइल या गैजेट खरीदने का मन बन सकता है, लेकिन बजट पर ध्यान।
2: लियो, सिंह राशि।
0: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो, सोच समझ कर काम आगे बढ़ाना है। वैसे तो नए काम में जल्दबाजी करने से बचें और हर व्यक्ति को पहचान कर ही भरोसा करें। नौकरी बदलने का विचार पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकता है और बचत योजनाओं में निवेश करने में आपको लाभ हो सकता है।
2: वर्गो, कन्या राशि।
0: नई पहचान, नई उपलब्धियां। ओहो, इसके संकेत मिल रहे हैं सच में। काम की तारीफ होगी और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने की जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी, आपकी गाड़ी चल जाएगी। भाई, परिवार में किसी पुरानी बीमारी चिंता बढ़ा सकती है, इसलिए सही समय पर सही इलाज।
2: लीब्रा, तुला राशि।
0: आज लेजीनेस बड़ी रुकावट बन सकता है, करूं ना करूं, करूं वही हो गया ना वैसे, कभी हाँ कभी ना। काम को टालने की आदत ये ठीक नहीं है। जो काम है उसको आज ही संभालें, कल पे नहीं टालें। जीवन साथी

0: के साथ शॉपिंग या घूमने का प्लान मन को खुश कर सकता है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: सफलता की राह पर आपके कदम तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया गया समय तनाव कम कर सकता है। ये जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए भगाओ, दोस्तों को बुलाओ, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और सही जगह निवेश करने से भविष्य मजबूत होगा।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: वह दिन खुशी और मौज मस्ती से भरा रह सकता है, लेकिन काम के वक्त ये तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, माता पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ जो काम है वो पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लापरवाही, इट्स नो नो नो, आत्मविश्वास, इसके साथ जो फैसले ले रहे हैं उससे काम बेहतर हो सकता है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मकर राशि आपके लिए दिन अच्छा है, वैसे तो बिजनेस की योजना है उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, नए पार्टनरशिप और घर खरीदने का सपना भी आकार ले सकता है। ओ हो हो, संतान से किया गया वादा पूरा करना जरूरी नहीं तो लगेगा अगली बारी, आप तो पापा ऐसे ही कह देते हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: भाई आज मेहनत और नए आइडिया आपकी सफलता की चाबी बन सकती हैं। बिजनेस में नई सोच और आपके अप्रोच आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जमीन जायदाद से जुड़ा मामला, कोई पुराना मामला भी हो उसको सुलझाने में राहत मिलेगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। ओ जी, ये खाना पीना प्लानिंग सारी करनी पड़ेगी अभी से।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: और वहीं पर अगर हम बात करें साहब तो जिंदगी यूं चलती रहेगी, लेकिन सच में अब आपको बताएं, पारिवारिक उलझने आपके मन को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। भाई बहन के बीच में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन दिल पर ना लें। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ी जो बातें हैं, मेहनत है, उसका शानदार फल आपको मिल सकता है।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे बहुत सारे घर होते हैं जहां पर एक्सटेंशन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कितना लोड और कौन से अप्लायंसेस प्लग इन करने चाहिए ये सोचना थोड़ा जरूरी है। वैसे कहते हैं कि घर घर में इसका इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन एक्सटेंशन बोर्ड पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट होने के साथ साथ आग लगने का खतरा, सो आप नहीं चाहते ना। इसे जरूरी है कि किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड में कम से कम 3 से 4 जो प्लग होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सब लगाने हैं। आसान शब्दों में कहें तो आप कम बिजली खाने वाले 4 अप्लायंसेस एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन जो भारी लोड वाले होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही पूरे बोर्ड को फूंकने के लिए काफी होता है, इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि 1000 वाट का है, 1500 वाट का है, ये सोचना है। कभी कभी जैसे कम जो करते ना यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मोबाइल चार्जर डाल दिया, लैपटॉप या टीवी जैसे कम बिजली खाने वाले, हाँ, 4 अप्लायंसेस कभी कभी प्लग इन करते हैं तो 200-300 वाट ठीक है। वहीं पर अगर ज़्यादा आप डाल दें, अगर ज़्यादा डालने की बात करें तो जैसे कि कैटल, गीज़र हो गया, या फिर अगर हम बात करें हीटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, इवन आयन, हाँ, ये काफ़ी बिजली खींचती है। अगर किसी एक्सटेंशन बोर्ड में इस तरह के अगर अप्लायंसेस को प्लग इन कर दिया जाए तो वो इस बोर्ड की जो लिमिट होती है ना, उसको पार कर जाते हैं, तो नतीजा ये है कि गर्म हो जाता है। आपने रियलाइज किया कभी? इसे ज़रूरी है कि आप देखें कि भाई इसमें कितना वोल्टेज है। आप अगर बोर्ड को घुमा के देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल ही जाएगा। उसी हिसाब से या फिर जब खरीदते हैं आपको बताना चाहिए कि आप किस कैटेगरी का आप एक्सटेंशन बोर्ड चाहते हैं, क्या उसमें प्लग इन करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर, जो नहीं सोचा उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। अरे बहुत कुछ है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिए।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: ज्योतिषा तुम्हारा साथ दे रही है, कहते हैं लगाना टू रेखा सुरेखा और पूरी माधव फैमिली के लिए। नमस्ते जी, कहते हैं एंजॉय द म्यूजिक, थैंक यू सो मच। अरे बाकी का मैसेज कहाँ गया? मॉर्निंग, कहते हैं लगाना टू अब्दुल एंड सारा भानो जी, आपको भी गुड गुड डे है, लगे रहो। अच्छा, जो लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं यही सोचकर कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा और ट्रैफिक मिल जाता है, लगता है सारी प्लानिंग फेल हो गई। मैं सोच रहा था कि गाड़ी चलेगी सरपट झटपट फटाफट, लेकिन ये तो कैसे चल रही है? धीमे धीमे
1: आरएनटी रेडियो मस्ती।

0: चलिए चलते हैं बस अगले गाने की तरफ, लेके जाएगा सीधा 10 बजे के समाचारों की ओर।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती।

0: I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
4: RM2,
3: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Okay, good morning. Time check, exactly 10 a.m. स्टूडियो में आगे रश्मि उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत में चलिए हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। सरकारी अस्पतालों में मधुमेह डायबिटीज को नियंत्रित करने के वास्ते दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर बीबी वाहिदा गुबी ने बताया कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुंचाए जाने में देरी हो सकती है, जिससे कि सप्लाई चेन में अस्थायी रूप से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। पर्यटन के अलावा मेडिकल हब स्ट्रेटेजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना, इन्हीं विशेष बातों पहलुओं पर ध्यान टिका हुआ है। महोवाक्वा जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए हैं और इस तरह पहले से ही वहाँ मिट्टी के कटने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। स्थिति में सुधार लाने के वास्ते कृषि उद्योग मंत्रालय की वन विभाग सेवा की ओर से एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत पौधे रोपे जा रहे हैं। नाचिया एनजीओ का सहयोग प्राप्त है। विदेशी समाचारों में बांग्लादेश में खसरे मीसल्स के करीब 500 बच्चों की मौत हो चुकी है और 53,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इस तबाही की सबसे बड़ी वजह लाखों बच्चों का अधूरा वैक्सीनेशन है। अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ रही है। इन पिछले 24 घंटों में 6 बच्चों की मौत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अभी तक 18 मिलियन बच्चों पर टीका लगाया जा चुका है। रुख भारत। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज तड़के भीषण आग लग गई। भयानक आग की चपेट में आने से एक दमकल कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। और अब रुख करती है जॉर्जिया। जॉर्जिया के एंटार्क्टिका में ड्राइड हिल्स और एमोरी में राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा अचानक आई बाढ़ की चेतावनी जारी रखी गई है। सोशल मीडिया पर बाढ़ के कई डरावने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पानी का स्तर बढ़ने के कारण कई गाड़ियां बीच सड़क पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। कल दोपहर बाद को हुई मूसलाधार बारिश के बाद अटलांटा के डाउनटाउन कनेक्टर पर हालात बेहद खराब हो गई। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 94 रॉयल रोड पायोट कैटर बोर्ड में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री गिरधारी लाल सुबल जो श्याम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी माँ श्रीमती उमाती सुबल के घर नंबर 94 रॉयल रोड पायोट कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। नंबर 5 जसमे स्ट्रीट मैटिमारे में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद सरजू जो मनोज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विमल सरजू के घर नंबर 5 जसमे स्ट्रीट मैटिमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन से अब्लिकेशन शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 नून।

0: शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसा म्यूजिक चलता रहता, लेकिन एम से म्यूजिक एम से में और ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे पांचवा महीना 2026 ने भी स्पीड जो पकड़ी है ना वो नॉर्मली है, लेकिन कभी लगता है ये साल कैसे स्पीड में ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपके प्रायोरिटी बेस्ड प्लान्स हैं, उनको पूरा करने के लिए लग जाओ। ये नहीं कि हाँ जून में कुछ सोचा है तो तभी देखेंगे। हाय ये लेजीनेस, इसे गेट बैक टू वर्क। इससे पहले कि आप सोचें कि ये तो काफ़ी बड़ी इशू बन गई है, क्यों ना अभी से उसको संभालना शुरू कर दें। फिर चाहे कोई प्लानिंग हो, किसी को इनवाइट करना हो या फिर तैयारी करनी हो, सब कुछ अभी से हो सकता है। भाई अपनी तैयारी भी हो गई है। इस घंटे के लिए हम बात करने वाले हैं कुछ बॉलीवुड के आपके मैसेजेस की। एंड जैसे हम चलते हैं घर की तरफ,

0: वहाँ पर भी कुछ बात करेंगे। कभी कभी जो इमोशंस होते हैं कंट्रोल में नहीं आते हैं, जेलेसी इसकी बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी दूसरे की तरक्की देखकर लगता है कि मेरा क्या होगा। अरे होगा ना, बस अपने विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे बढ़ते हैं हम 9 बजे से शुरुआत, अब 10 से 11 फिर मुलाकात।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: is the messenger of love.
1: क्या बात कहती है एंड में ना, हाँ लेकिन वो जो 90s से साल आता था हे हे वो इसमें आ गया हे हे हाउ इज इट गोइंग बता दो भाई.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings Radio Musty.
1: भाई बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो काम करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कभी कभी किसी की जब गुड न्यूज़ आती है तो दूसरा इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है. ऐसा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है. वैसे सोशल कंपैरिजन हो जाता है शुरू और अपनी जो गति है प्रोग्रेस है उसको आसपास जो मौजूद लोग हैं उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. जब कोई दूसरा मनचाही चीज़ या उपलब्धि प्राप्त करता है तो अपने जीवन में उस चीज़ की अनुपस्थिति महसूस होने लगती है कि क्यों नहीं मुझसे हो पाया. किसी दोस्त का प्रमोशन हो, किसी की सगाई हो तो लगता है जैसे अपने अकेलेपन को कुरेद सकती है. किसी इंसान की फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन अपनी तरफ वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखना, ये सब नहीं होना चाहिए. नहीं, कभी किसी को लगता है कि मैं तो पीछे ही छूट गया, या फिर आत्मसम्मान की कमी से लगती है, या फिर सोशल मीडिया पर अरे उसको देखो कहाँ कहाँ पर जाते हैं क्या करते हैं अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया. अरे साहब आपने जूते पहने हैं वो किसी और ने नहीं पहने ना, चलना तो आपको ही होगा. ज़रूरी है कि शर्मिंदगी के बिना इमोशन को अपनाएं. उदासी या जलन महसूस करने के लिए खुद को भला बुरा ना कहें. भाई जो इमोशंस होते हैं वो खाली सिग्नल हैं, कोई अपराध नहीं है. इन्हें दबाने से कुछ नहीं होगा, समझना ज़रूरी है. उनकी खुशी से क्या फ़र्क पड़ा, यानी कि कोई अच्छा काम कर रहा है आगे बढ़ रहा है तो उसे सबक लें, क्यों रुके नहीं. ऐसा है कि सोचें अगर वो तो मैं क्यों नहीं, उससे प्रेरणा लें ज़रूरी है. कंपेरिजन ना करें. सोशल मीडिया की मैनेजमेंट करना सीखें. बस अपने गोल्स खुद बनाएं जो अचीवेबल हो, आपके दायरे में हो, जो आप कर सकते हो. फिर देखिए साहब जिंदगी चेंज हो जाएगी. शुरू में करना हो सकता है कि मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि दूसरों की खुशियों और उपलब्धियों का सच्चाई से आनंद उठाने की कोशिश करें. बेशक आप अच्छा महसूस करेंगे, सच बोल रहा हूँ. कोशिश करके देखिए, फिर दूसरे की खुशी में होना आप

0: खुश हो सकेंगे और फिर लगेगी सब तरफ खुशियां खुशियां।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: अच्छा वो सुना ना आपने वो हेलीकॉप्टर राइड, हाँ तो भाई अभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, देन इट्स योर चांस।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा ऐसा है कि आप अगर एक हेलीकॉप्टर राइड जीतना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। एक्चुअली हर दिन आप कोशिश करते हैं, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होता अगले दिन फिर से भेज सकते हैं। तो आपको करना ये कि MBC प्ले 1.0, हाँ ये जो नया वर्जन है ना MBC प्ले का, वो आपको डाउनलोड करना है। और जब आप उसके अंदर साइन इन करेंगे तो फिर आपको ये आता है मैसेज MBC OTT से, तो बस वो जो मैसेज आया अपने फ़ोन पर स्क्रीनशॉट उसका ले और उसको भेज दें ऑन 5499-1294। व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 5499-1294 पर, और उसके बाद आपको 5:30 बजे के बाद यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको मौका मिलता है इस हफ्ते जानने का कि कौन हुआ है शॉर्टलिस्ट। उनको फ़ोन करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हो सकता है आपका नाम आ जाए, फिर आप बढ़ेंगे अगले स्टेज की तरफ। तो पहला स्टेज, बाकी सब छोड़ो, हाँ पहला स्टेज ये है कि MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करो फटाफट, और उसके बाद जो MBC OTT से मैसेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप ऑन 5499-1294, और हो सकता है कि आप अपना नाम सुने आज शाम को।

0: फोन आ जाए जी, मैं उसके बाद कहता हूँ कि आप भी लाइन में लग गए और उसके बाद उड़न छू। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर राइड इज जस्ट फॉर यू।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
3: चलिए सर, जहाँ पर हम बात करते हैं कि फैशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंफर्ट फैक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। विंटर का ट्रेलर शुरू हो चुका है दोस्तों, वार्डरोब का इंटरवल ख़त्म, अब एंट्री होगी स्टाइल की, फुल बॉलीवुड स्टाइल में। भाई सुबह ठंडी और दोपहर में थोड़ी सी सानी, लेयरिंग इज़ द रियल हीरो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी खुशी कभी गम में देखा था आपने कैरेक्टर्स को, स्वेटर और जैकेट का कॉम्बो, एक लाइट टी और उसके ऊपर एक डेनिम जैकेट और बस स्टाइल होगा फुल ऑन। अर्ली कलर्स जैसे कि विंटर्स की बात करें तो ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, बेज या फिर मरून पहनो, फुल कोजी वाइब्स मिलते हैं। एग्जैक्टली लाइक ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर का ट्रैवल लुक, कैजुअल भी था और कूल भी। मैं बस स्कार्फ्स को अंडर एस्टिमेट मत करो यारो। वैसे एक स्टाइलिश स्कार्फ पूरा लुक को हीरो वाली एंट्री बना देता है। अगर थोड़ा रोमांटिक फिल्मी अंदाज चाहिए तो DDLJ वाले जो लॉन्ग कोट्स और मफलर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ठंडी पड़ी नहीं है ना। विंटर शुरू होते ही शूज़ का भी मेकअप होना ज़रूरी है। वाइट स्नीकर्स या एंकल बूट्स दोनों ही परफेक्ट होते हैं, थोड़े से रगेड थोड़े से स्टाइलिश, फुल ऑन हृतिक रोशन वाली एनर्जी फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वहीं पर लेडीज सॉफ्ट स्वेटर्स पहन सकती हैं हुप इयररिंग्स के साथ और लाइट न्यूड मेकअप, ये बिल्कुल फिट होगा ना, जैसे कि प्योर दीपिका का स्टाइल। तो दोस्तों मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल, पर आपका फैशन मीटर रहना चाहिए सुपर हॉट, क्योंकि बॉलीवुड सिखाता है स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं कॉन्फिडेंस में होता है, सोचना जरूरी।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: क्या करें बताओ।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: खबर ना लगने पाए सजनी नू, ओ माय गॉड। वैसे तो आपको बताइए कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि चाहे बी टाउन की बातें हों या फिर आपके मैसेजेस हों, सब वो शामिल करें। और यहाँ पर अगर बॉलीवुड की बात करें तो अभी भी कहानी चल रही है अबाउट धुरंधर। अभी भी पैसा कमा रही है, लोगों को ठेंगा दिखा रही है। और अब आने वाले टाइम के अंदर लग रहा है कि कुछ ऐसी मूवीज़ बनने वाली हैं जो कि लंबी ड्यूरेशन की होगी या फिर चैप्टर होंगे उसके अंदर अलग अलग, कि भाई ऐसा है कि पहले चैप्टर 1 देख लो, जैसे पुष्पा आया था, हाँ कुछ ऐसे ही। लेकिन बॉलीवुड की बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। चलिए साहब, बॉलीवुड के अंदर अभी फ़िलहाल हमारे दो जब तक तीसरा ना हो, हाँ कुछ ऐसी कहानी चल रही है। आयुष्मान खुराना, उनकी भी कहानी ठीक चल रही है, लेकिन आज कंपेयर टू धुरंधर तो काफ़ी पीछे ही है। धुरंधर के अंदर जो OTT प्लेटफॉर्म पे आने की बात हुई थी तो काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं उस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि 4 घंटे सिनेमा हॉल में, अरे घर पर बैठ कर आराम से। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग आंधी आ रही है और इस बार एक्स्ट्रा घातक होने वाली है। तो बस हिंदी के अंदर, तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर आ चुकी है और नेटफ्लिक्स। वहीं पर प्रीतम साहब कहते हैं कि मेरे को अक्यूज़ किया गया कि मैंने 1993 का इटालियन सॉन्ग लिया है फॉर कॉकटेल 2, तो ऐसा कुछ है नहीं। कहते हैं बस मैं उनको सोचना नहीं चाहता, उनके बारे में समझना नहीं चाहता, अपना काम करना चाहता हूं। बस अपना एक सोशल मीडिया पर एक डाल दिया पोस्ट और कहते हैं कि हर कोई जो मेरा गाना होता है उसके अंदर कह सकता हूँ कि सेल्फ अपॉइंटेड म्यूज़िक होता है, और हर कोई उसको कोशिश करता है कुछ बताने की कि ये कहाँ से कॉपी किया गया, और मुझे बोला जाता है कॉपी किंग, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉकटेल 2 की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हाँ इसलिए भी क्योंकि उसके अंदर म्यूज़िक होगा प्रीतम का, और दूसरी बात है जब उसका रिलीज़ हुआ ना, हाँ कुछ अलग ही था वो भी। गाना चाहे इतना लंबा नहीं था लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इट वॉज़ गुड फन टू लिसन टू। अब देखते हैं कि कहानी क्या रंग लाती है, लेकिन जब तक स्टिल इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: 11 बजे वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में आगे रजनी, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के वास्ते दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समुद्री मार्गों में जो बदलाव लाए गए हैं उसके चलते अन्य दवाइयों के पहुंचाए जाने में देरी हो सकती है, जिससे कि सप्लाई चेन में अस्थायी रूप से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। इस तरह पर्यटन के अलावा मेडिकल हब स्ट्रेटेजी का उद्देश्य है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। पहले से ही मॉरिशस की कई उपलब्धियां हैं जिनसे इस उभरते हुए सेक्टर को विकसित किया जा सके। ये नीति तीन प्रमुख पहलुओं पर टिकी हुई है: विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। जिन लोगों को कम दिखाई देता है या फिर जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वे अब से मेट्रो एक्सप्रेस में अपने गार्ड कुत्ते को साथ ले जा सकते हैं। इस कदम का मकसद है उनकी आवाजाही को और आसान बनाना तथा साथ में उनके दैनिक जीवन में उनकी स्वतंत्रता को अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित करना। लाभार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है मॉरिशस में एक अधिक समावेशी समाज के लिए। विदेश समाचारों में बांग्लादेश में खसरे मिस्र के करीब 500 बच्चों की मौत हो चुकी है और 53,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर पड़ा है। इस तबाही की सबसे अधिक बच्चे लाखों बच्चों का अधूरा वैक्सीनेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन पिछले 24 घंटों में 6 बच्चों की मौत हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। अभी तक 18 मिलियन बच्चों पर टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज तड़के भीषण आग लग गई। भयानक आग की चपेट में आने से एक दमकल कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 2 दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और खेल जगत से ये बेहतरीन खबर, सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन राचेल क्लोफ्रेंस्टेन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, 1:59.82 में फासला तय किया। राचेल की ये सबसे पहली प्रतियोगिता रही है और इस पर ये बेहतरीन प्रदर्शन, उन्होंने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की, साथ में गर्व भी व्यक्त किया मॉरिशस के लिए ये जीत हासिल कर पाई। और यूरोप में फुटबॉल की बात करें, कल रात एस्टन विला और एससी फ्रेबर्ग के बीच मैच खेला गया जिसमें एस्टन विला की जीत 3-0 से हुई इस्तांबुल में। इस तरह उसने यूरोपा लीग जीता, 1982 के बाद से उसकी पहली यूरोपीय ट्रॉफी है। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 94 रॉयल रोड पायुत कैट्रबोन में, नंबर 94 रॉयल रोड पायुत कैट्रबोन में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री गिरधारी लाल सुबल, श्री गिरधारी लाल सुबल जो श्याम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी माँ श्रीमती उमाती सुबल के घर नंबर 94 रॉयल रोड पायुत कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। लातू लेन वाकवा में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती धोंदी पैदाशी नाम कुशा, जो विद्यावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके बेटे श्री राजेश ढोंदी के घर लातुलेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 5 जसमे स्ट्रीट बैट्समारे में 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद सरजू, श्री सत्यानंद सरजू, जो मनोज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विमल सरजू के घर नंबर 5 रसमय स्ट्रीट मत्सिमारी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांचाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: क्रिमेशन टुडे 12:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti.
2: जैसा पहुंचे 11 से 12 के बीच में और अभी बीटाउन की खबरें मैं देख रहा हूं कि काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है और वहीं पर ये भी देख रहे हैं कि भारत में ही इतनी गर्मी हो रही है। ओ ला ला ला, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां पर भी चेंज ऑफ सिचुएशन, हालांकि कहते हैं कि दिन हो रात हो, गर्मी हो बरसात हो, कैसे मौसम में हालात हो, आपका साथ हो तो क्या बात हो। रूठना मनाना, अरे चाहे उनको बताना,

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, बॉलीवुड की बात करते हैं तो वहीं पर हैं अदनान सामी, जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अपनी एल्बम्स के लेके। लेकिन अभी उन्होंने एक चीज़ रिवील की है कि लेजेंडरी माइकल जैक्सन के साथ वो एक एल्बम बनाने वाले थे। जब उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन होने वाली थी, डिस्कशन चल रही थी और उसके बाद वो गए तो एल्बम रुक गई। लेकिन उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि देखो, माइकल जैक्सन पूरी प्लानिंग करते थे कमबैक के लिए, और जब जो एलिगेशन थी उनके अगेंस्ट वो सब सिचुएशन ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि चलो फर्स्ट एल्बम निकालते हैं अपने भाइयों के साथ। और उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि एक ऐसा म्यूज़िक फॉर्मेट हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। तो बस ऐसे ही फैमिली से कॉल आया कि हमने आपका म्यूज़िक सुना है, और अदनान सामी तो खुश हो गए, बस फ़ोन में बात शुरू हो गई। इवन माइकल जैक्सन एंड उनकी डिस्कशन आगे बढ़ी और कुछ ओरिजिनल कंपोजिशंस लेकर वो जाना चाहते थे। लेकिन सुनने में आए जैसे ही कि ही पास हुए तो फिर ये सिचुएशन वहीं रुक गई। लेकिन फैमिली मेम्बर ने कहा कि जब इतना काम किया है तो क्यों ना कंटिन्यू करें और कुछ बनाएं। तो बस उन्होंने प्रोड्यूस किया एक गाना साथ में। लेकिन सोचिए, अगर अदनान सामी उनके साथ कोलैबोरेट कर पाते वर्ल्ड टूर के लिए तो अलग ही बात होती। नहीं,
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: फिल उड़ गई, निकाल लो यहाँ से।
1: स्मार्ट बॉय
0: गाड़ी मांग रहे हो? गाड़ी यानी सामी जो भी हो, सुनो, ऐसी कोई गाड़ी न बनी थी, न बनी है, न बनेगी जिसमें तुम फिट हो सको।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चेयर पे से आओगे याद दिला दूं कि अगर आप जीतना चाहते हैं हेलीकॉप्टर राइड फॉर टू पीपल तो हेज योर चांस. मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और एमबीसी प्ले की तरफ से आपको मौका मिल रहा है. बस आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0. ध्यान रखिए वो पुराना वाला वर्जन नहीं है, नया वाला वर्जन एमबीसी प्ले 1.0. और उसके बाद जब आप साइन इन करेंगे तो आपको मिलेगा एक मैसेज फ्रॉम एमबीसी ओटीटी. और वो जो मैसेज है ना उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए हमें ऑन व्हाट्सएप 54991294 पर. और फिर ये जो लंबी लिस्ट है उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और 5:30 के बाद जी हाँ मंडे टू फ्राइडे आपको मौका मिल रहा है टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. हो सकता है ये मौका आपको मिल जाए. सो डू नॉट डिले, जल्दी जल्दी अपने एमबीसी प्ले 1.0 को डाउनलोड कीजिए और भेजे हमें वो स्क्रीनशॉट और फिर हो सकता है कि आ जाए आपका नंबर. हु नोज, ऑल द बेस्ट.
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं

0: आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहर के मुताबिक इन पिछले महीनों के दौरान फिनटेक में काफी गति आई है और साथ में भारी संख्या में लोगों की ओर से मोबाइल पेमेंट भी किए गए हैं। इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित गति प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ मॉरिशस का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। इस तरह सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीदें रख रही है। विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को विकसित को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना, इन्हीं तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान टिका हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, सरकारी अस्पतालों में मधुमेह को, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी अब से काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर के अनुसार अस्पतालों में इलाज की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट आई है। फिर भी उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में वाली टीवीके सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसमें टीवीके के 21 और कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज तड़के भीषण आग लग गई। भयानक आग की चपेट में आने से एक दमकल कर्मी और सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। और खेल जगत से ये खबर, सावोना इंटरनेशनल मीटिंग में हमारी हमवतन राचेल क्लॉपफेन्स्टाइन ने 800 मीटर का राष्ट्रीय मॉरिशन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस तरह ये सबसे पहली प्रतियोगिता रही उनके लिए। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इस पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। साथ में उन्होंने कहा कि ये गर्व की भी के बात है, मॉरिशस के लिए ये जीत हासिल कर पाई है। और यूरोप में फुटबॉल की बात करें, कल रात एस्टन विला और एससी फ्रेबर्ग के बीच मैच खेला गया, जिसमें एस्टन विला की जीत 3-0 से हुई। इस तरह यूरोप लीग वो जीत गया, 1982 के बाद से उसकी पहली यूरोपीय ट्रॉफी है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। लातुलेन वाकुआ में, 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती धोंदी, पैदाशी नाम कुशा, जो विद्यावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके बेटे श्री राजेश धोंदी के घर लातू लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमामेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 5 जासमी स्ट्रीट बैतिमारी में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद सरजू, जो मनोज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विमल सरजू के घर नंबर 5 जासमी स्ट्रीट बैतिमारी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौजावले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: बारह बजकर 11 मिनट हो चला है और आप सक्सेसफुली जुड़ गए हैं रेट्रो रिदम के साथ। अभी वक्त हो चला है, थोड़ा रिवर्स करते हैं, चलते हैं उस दुनिया में जब लव लेटर्स लिखे जाते थे, ब्लू टिक्स नहीं देखे जाते थे और जब पहला प्यार सच में पहला नशा लगता था। चलिए वापस उसी खूबसूरत दौर में ले चलते हैं आपको आरएमचू रेडियो मस्ती पर ही। 2 बजे तक कनेमनी आपके साथ में ही है, तो स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: रेट्रो रिदम का मीटर फुल नॉस्टैल्जिया पे है। वो जमाना याद है जब कैसेट को पेंसिल से रिवाइंड करते थे और पार्टी तब कंप्लीट होती थी जब एक दो तीन का गाना चलता था। चलिए फ्लैशबैक मोड ऑन हो चुका है, फिर से आपको उनकी मेलोडी याद दिलाते हैं। हैपनिंग ओनली ऑन योर आरएम2 रेडियो मस्ती।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: ओल्ड इज गोल्ड सिर्फ लाइन नहीं होता, वो एक फीलिंग होता है, और रेट्रो रिदम पर वो ही गोल्डन फीलिंग जारी है। चल 2 PM विद निर्मनिया, एंड हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्योति जी। हेलो। तो अगर आप भी गोल्डन हिट्स के शौकीन हो, ये सही जगह है, क्योंकि नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही खूबसूरत गाना आपके इस गुरुवार को रंगीन बनाने के लिए। तो यहीं पर जुड़े रहिए हमारे साथ HURM2 रेडियो मस्ती।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ South
2: 103.5,
3: East West
2: 96.4,
3: Center
2: 99.4,
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti,
1: feel the musti.
0: दिन के एक बजे है चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था, नमस्कार।
4: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है, जहां ICT मंत्री

अविनाश रामतोहल के मुताबिक इन पिछले महीनों के दौरान फिटनेक में काफ़ी गति आई है और साथ में भारी संख्या में लोगों की ओर मोबाइल की ओर से मोबाइल पेमेंट किए जा रही हैं। इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है। स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऑफ मॉरिशस का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है। सरकार अफ्रीका, हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के साथ भारी उम्मीद

0: हब स्ट्रेटजी का मकसद है क्वालिफाइड नौकरियां पैदा करना और देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। पहले से ही मॉरिशस की कई उपलब्धियां हैं जिनसे इस उभरते सेक्टर को विकसित किया जा सकता है। ये नीति तीन प्रमुख पहलुओं पर टिकी हुई है, विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। सरकारी अस्पतालों में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की कमी पर काबू है। जी हाँ, अस्पताल और का कहना है और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि अस्पतालों में इलाजों की उपलब्धता के साथ स्थिति सामान्य पर लौट गई है। फिर भी इस बात पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि समुद्री मार्गों में बदलावों के चलते अन्य दवाइयों के पहुँचाए जाने में देरी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार चौथे दिन दुनिया की का सबसे गर्म शहर रहा। कल यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले मंगलवार को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस था। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों के लिए येलो और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। लातूर लेन वाकुआ में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्वती दुंदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुसा, उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके बेटे राजेश दुंदी के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमा मैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Mustard.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: ऐसे ही इन खूबसूरत गानों के साथ दूसरे पहर में पहुंच गए हैं हम. गुड आफ्टरनून, आशा है कि आप ठीक हो एंड आपने लंच कर लिया है. अगर अभी आप भोजन कर रहे हैं तो आपको विश करते हैं बन अपेची. ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, रेट्रो गानों की बरसात ऑन गोइंग है. आरंभ तो रेडियो मस्ती पर ही.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: Retro Rhythm.
1: कभी कभी एक गाना पूरी जेनरेशन डिफाइन कर देता है. कॉलेज के सपने, फ्यूचर प्लान्स और वो इनोसेंट एक्साइटमेंट जो हम फील करते थे पहले, वो सब याद आ जाता है. एंड रेट्रो रिदम पर टाइम मशीन बिल्कुल ऑन है. आपको बस इन्जॉय करना है, वाइब करना है. बाकी आरम टू वीडियो मस्ती यहीं पर है टू कीप यू कंपनी.
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम।
1: खूबसूरत गोल्डन गाने, दिल की बातें, डेडिकेशंस सब 5491294 पर अभी हमारे साथ कनेक्टेड है उषा जी। लमोगी से वाइब कर रहे हैं अपने आरम जो रेडियो मस्ती के साथ मांग रहे हैं गाना सीटा फैमिली, जीवन फैमिली, माधु अशिगादू फैमिली के लिए भी जो लामीचे के रहने वाले हैं। ओसो कनेक्टेड है हमारे साथ अभी हमारे दोस्त गिरीश, हमारे सिंगर फ्रेंड। तो चलिए आप सभी के नाम करते हैं ये अगला गाना आपके ही आरम जो रेडियो मस्ती पर।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Red

0: रेट्रो रिदम।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, उस जमाने के गाने भी अलग थे ना, सिंपल मैजिकल। और कुछ गाने आज भी सुनो तो वो पूरा जमाना जो है आंखों के सामने आ जाता है। तो आशा है कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं अपने ही रेट्रो रिदम में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ना आपको याद दिला देते हैं कि आप जीत सकते हो 2 टिकट्स एक हेलीकॉप्टर राइड के लिए। आपको बस डाउनलोड करना है MBC प्ले ऐप 1.0 यानी कि नए वर्शन को। और जब आपने साइन इन कर लिया है, अपने अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट आपको हमें भेजना है 5499-1294 पर, फिर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो चलिए आजमाइए अपना लक RM2 वेडियो मस्ती के साथ।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check, it's 2 p.m. संक्षिप्त समाचार आपके साथ आज से नमस्कार आपको
7: नमस्कार 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का मॉरिशस डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से अपना टेक्नोलॉजिकल बदलाव गतिशील बना रहा है आईसीटी मंत्री अविनाश रामतहल के अनुसार इन पिछले महीनों के दौरान फिनटेक में काफी प्रगति हुई है और साथ ही भारी संख्या में लोगों की ओर से मोबाइल पेमेंट किए जा रही है इस तरह मूल ढांचों को सुदृढ़ करने और वित्तीय मंच को सुरक्षित रखने पर प्राथमिकता दी जा रही है स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और गति प्रदान करने के लिए मैकोमोशस का सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है मॉरिशस इलाके में एक वास्तविक चिकित्सा हब की तरह पेश होना चाहता है सरकार अफ्रीका हिंद महासागर और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करने

के लिए एक टिकाऊ मेडिकल टूरिज्म के विकास के लिए भारी उम्मीदें रख रही है। विशेष चिकित्सा मूल ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना और पर्यटन तथा चिकित्सा पर्यटन सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। महुआ कुआ जलाशय के चारों ओर 5,000 पौधे और 14,000 सजावट के पौधे बोए गए हैं। देश के सबसे बड़े जलाशय का निर्माण

0: और आज इसके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अहम कोशिशें जारी हैं, क्योंकि पहले से ही मिट्टी के कटने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से वन विभाग की ओर से भी एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वहाँ पर नए पौधे रोपे जा रहे हैं। भारत में गर्मी चरम पर, पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा लगातार में वहां पर चौथा दिन सबसे गर्म रहा, 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान रहा है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए कई स्थानों पर भीषण लू का अलर्ट जारी किया। अगले तीन दिनों के लिए भी येलो और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: Bombay Talkies
5: Radio Musty
6: Radio

0: मेहमानों के साथ आपको वेलकम करना चाहते हैं योर बॉम्बे टॉकीज।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज
4: रेडियो मस्ती
1: रेडियो

जावन जावन वैसे हम आते जाते रहते हैं यहाँ पर आपका साथ दिलाने के लिए। हम तो पहुंच गए हैं मनीषमा जी, यहाँ पर आपके साथ है टिल 7 PM। यस, आई एम गोना कीप यू कंपनी विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस। वैसे यहाँ पर कुछ नए गाने और कुछ सूजिंग

0: बॉम्बे टॉकीज़ बॉलीवुड से कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। बस अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक विद झूम बराबर झूम शराबी दे दे प्यार दे तू। हियर वी गो।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Hey famille, pas besoin de faire au shopping moyaz, pas besoin de displace.
4: Côté Alcoury Fashion, nous nazis tout pour toute la famille.
3: Designer lehenga, lechap, jodhpuri, crop top, sherwani, costume complet, blazer et bien plus encore à bas prix imbattable.
4: Alcoury Fashion, route royale, vis-à-vis Jean des Pamplemousses, téléphone 57 99 37 82.
3: Alcoury Fashion, c'est tradition, élégance et qualité.
1: RM2
2: Radio Musti.
5: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
0: Bombay Talkies. Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: अच्छा बीजा में हर रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर शाहरुख खान के बारे में। एक्चुअली शाहरुख खान इज मेकिंग हेडलाइंस विद द अपकमिंग मेगा एक्शन फिल्म किंग। रिपोर्ट का ये मानना है कि सिक्योरिटी ऑन सेट हैज बीन टाइटन एंड क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि लीक क्लिप्स हो रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियोज जो कि ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। देखो जी, शाहरुख खान कुछ कर रहे हैं तो एवरीबडी विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके,

0: So the upcoming Indian Hindi language film, yani ki co-written and directed by Siddharth Anand, produced by Gauri Khan, will chase set actually for a theatrical release on the 24th of December 2026. वैसे फिल्म में नजर आने वाले हैं शाहरुख खान, ऑफ कोर्स सुहाना खान बेटी साथ में होंगी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी एंड रानी मुखर्जी, यानी कि फन कॉमेडी सब साथ में होंगे. ऊपर से पीपल आर लविंग दैट दीपिका पादुकोण इसमें साथ नजर आने वाले विद रानी मुखर्जी. क्या पेयरिंग है, क्या बात है. वैसे एक्चुअली फैंस आर सुपर एक्साइटेड एज दीपिका पादुकोण हैज रिपोर्टेडली रैप्ड अ शूटिंग स्केड्यूल फॉर किंग अलोंगसाइड शाहरुख खान एंड वाज रिसेंटली स्पॉटेड फिल्मिंग अ न्यू एडवर्टाइजमेंट. यही तो खासियत है हमारी जो बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री के लिए, बिकॉज दे नो हाउ टू वर्क अ बिजी स्केड्यूल एंड साथ में ये जो काम होता है विद वन फिल्म इन शूटिंग अनदर एडवर्टाइजमेंट एंड सब कुछ टाइम के साथ और टाइम के मुताबिक ही खत्म करना पड़ता है. उनके जो प्रेशर होते हैं आने तो लाइफ है यार. लेकिन ऑल द बेस्ट गोज आउट टू किंग खान जो कि आ रहे हैं विद दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मूवी जो रिलीज होने वाली है ऑन द 24th ऑफ दिसंबर 2026. बिग न्यूज ऑल्सो फॉर बॉलीवुड लवर्स, 2026 एक्चुअली बीन कॉल्ड द बिग खान ईयर विद सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान ऑल रिटर्निंग विद मैसिव प्रोजेक्ट्स दिस ईयर.
1: More music is in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती.
3: रेडियो मस्ती.

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़
3: रेडियो मस्ती.
4: रेडियो मस्ती.

0: more music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: अच्छा जी, अगर हम न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं अभी के लिए तो 2:45 हुए। आलिया भट्ट कंटिन्यूज टू शाइन ग्लोबली आफ्टर हिंदी स्पीच एट द BAFTA इवेंट, वन प्रेज फ्रॉम ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। अभी लोग कह रहे हैं कि कैन फेस्टिवल में किसी ने देखा नहीं। आपने अगर देखा नहीं आलिया को तो कैसी दिख गई हो? ब्यूटिफुल ड्रेसेस, लाइक वो जैसे कि ना परी की जैसी लग रही है। वैसे आज हमारी परी की बात तो नहीं हो रही है, अभी तो आज परी नहीं आई, लेकिन हमारी आलिया बट बिल्कुल एंजल की तरह दिख रही थी विद द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वैसे सैलमन हम कह सकते हैं कलर ऑफ द ड्रेस एंड द ड्रेप एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइक फेरी टेल शी वॉज वॉकिंग डाउन द रेड कार्पेट। वैसे यहाँ पर अगर अल्फा की बात करें, अपकमिंग स्पाई थ्रिलर स्केड्यूल फॉर रिलीज ऑन थिएटर्स, यानी कि इसी साल जुलाई में 10 जुलाई को बी रेडी टू सी आलिया भट्ट इन द स्पाई थ्रिलर स्केड्यूल फॉर रिलीज। ओके जी, डायरेक्टर by Shiv Ravel and produced by Yashraj Films. यानी कि तो धमाका ही होने वाला है। Marks actually this film marks the first female-led action movie in the Yashraj Spy universe.

0: यूनिवर्स क्या करते हो आप तैयार ही है यहाँ पर जुड़ने के लिए विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस प्लस कुछ गर्मा गर्मणों के साथ खबरों के साथ हम है स्टूडियो में मनीषमा टिल 7 PM
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज
4: रेडियो मस्ती
5: रेडियो मस्ती

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check, it's 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ आसान. नमस्कार आपको.
7: नमस्कार. सुपहर 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा. ऐप एक नई इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है जो मौजूदा 15,000 रुपये की डिजेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी. इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही. पिछली कॉन्ट्रियानो और बगातेल में कभी वीरान पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है. शुगरकेन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशसकेन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सरकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हैं. साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है. अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया. इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अभी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया. मॉरिशस के सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है. पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मॉरिशस आए हुए थे जिन्होंने यहाँ की मेडिकल टीमों के साथ मिलकर अपना अनुभव

भाव साझा किया। दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मघारी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लोसन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य सेक्टर के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। दुनिया की नज़रें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल

0: कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है लेकिन दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: जली जी, आप जुड़े हैं हम टू रेडियो मस्ती के साथ। वैसे आपको बता दूं कि यार 3 बजे के बाद, और यानी कि 5:30 बजे स्पेशली हम दो लोगों को ऑन एयर फोन करने वाले हैं और मुकाबला होने वाले हैं। किस चीज के बारे में हम बात करें? अबाउट दी MBC प्ले 2, एक्चुअली 1.0 द न्यू वर्जन। जी हाँ, MBC प्ले 1.0 द न्यू वर्जन एज पार्ट ऑफ द लॉन्चिंग कैंपेन ऑफ MBC प्ले मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एंड कोलेबोरेशन विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। आपके लिए बस नेशन वाइड रेडियो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर आपको बस डाउनलोड करना पड़ेगा द MBC प्ले एप्लीकेशन। वहां पर अपना MBC प्ले अकाउंट क्रिएट करके ये जो स्क्रीनशॉट है सेंड विया व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट शोइंग देयर एक्टिव MBC प्ले अकाउंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड नंबर्स कम्युनिकेटेड राइट नाउ 5499-1294 पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा और आप ऑटोमेटिकली एक ड्रॉ के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, जो हर रोज हम करते हैं। और 5:30 बजे दो लोगों को हम ड्रॉ के लिए निकाल देते हैं और उनसे बात करते हैं ऑन एयर। एक क्वेश्चन, द क्वेश्चन राउंड एंड देन आफ्टरवर्ड्स द विनर ऑफ द क्वेश्चन राउंड इज ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द लास्ट ड्रॉ जो कि होने वाला है 19 मई को। ओके, सो हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती। आई गेट यू सम रियली ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक ट्रैक्स ट्यूनिंग फॉर यू।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
2: आज आजादी है बॉम्बे टॉक।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: उसे झनकार से है दिल के तार में तब से
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती

0: mix.
1: Aaj azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: More music in the mix.
1: आज आजादी है.
2: बॉम्बे टॉकीज़
3: रेडियो मस्ती.
4: रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: Time check. शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए बिकली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अभी. नमस्कार आपको.
7: नमस्कार मनीषमा. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. 4 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. पिचिकों, थ्रियानो और बगातेल में कभी वीरान न पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है. शुगर केन ब्लॉक रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं. साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है. इस परियोजना के तहत गुरुवार को पिचिकों में एक स्थल निरीक्षण किया गया. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त मासी सहायता में बदलाव किया जाएगा. अब एक नई इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है जो मौजूदा 15,000 रुपये की डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी. इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसके रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा. ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही. अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया. इस शिखर सम्मेलन में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने कहा कि दुनिया में करोड़ों लोग अब भी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी बल दिया. मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है. पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मॉरिशस आए हुए हैं और जिन्होंने यहां की मेडिकल टीमों के साथ अपना अनुभव साझा किया. दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मागरवी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉन्सन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई. इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है. विदेशी स्तर पर हम देख

0: अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है, परंतु दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रामजीन लेन एंग्रे कातन ओकुले में 44 साल के 44 years old के श्री प्रेम किशन मनराज, जिन्हें सब लोग विकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के घर रामजीन लेन एंग्रे कातन ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो At 9 a.m. रॉयल रोड फ्लोरियाल में 62 साल की 62 years old की श्री सत्यानंद राज सनमुखिया, जिन्हें सब लोग मतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोडोरोज फ्लैग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो आफ्टरनून एट 2। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. Laughter Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
3: Radio Musty.

0: अभी तो शुरू हो चुका है कारवां फॉर यू विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस। आप तो जानते ही है एवरी डे एवरी मिनट बस आपके लिए आपके दिल की खिदमत के लिए हम हाजिर हो जाते हैं।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती।

झूम झूम के गाओ रे, ब्यूटीफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी स्काईफॉल। वेलकम बैक टू योर अवतार वाइब्स। यहाँ पर मनीष फिर भी साथ निभा रही है, जैसे कि हमने बोला था कि दो से चार तो भूमि

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और MTU
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए जी, अमेजिंग आफ्टरनून गुजरात हुई एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती। भूलेगा मत, जैसे कि हमने बताया था कि यार आज तो आप जो जानते ही है, इस हफ्ते के लिए एग्री ड्रॉ होने वाला है फॉर ऑफ कोर्स आवर MBC प्ले 1.0 एप्लीकेशन के लिए। जी हाँ, अगर आप सुन रहे हैं हमको तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेशक हमारे साथ MBC के साथ विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये रेडियो कंपटीशन। आपको क्या करना है, सिंपली जाकर डाउनलोड कीजिएगा MBC प्ले 1.0, दिस इज द न्यू वर्जन। और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लो, क्रिएट एन अकाउंट एंड सेंड द स्क्रीनशॉट वी व्हाट्सएप 5491294 पर, और बन सकते हैं आप द लकी ड्रॉ का जो कंपटीशन है। दो एक सवाल करेंगे, दो लोगों को लेंगे 5:30 बजे।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Quand on a élection, est-ce qui ou pour capable voter? Si ou non, pas la liste électorale ou pas pour un droit voter. Bureau commissaire électoral peut lancer l'exercice enregistrement entre les 16 mai jusqu'à les 30 mai 2026. Ou fin gain 18 ans, ou bien ou peut gain 18 ans jusqu'à les 15 août, ou fin sans l'adresse. Ou pensez que ou non, pas la liste électorale provisoire. Visite ban centre enregistrement pour vérifier si ou non bien la liste ou s'il est bien écrit. Dans Maurice, ben centre pour ouvert de lundi à vendredi entre 4h jusqu'à 5h30 tantôt et dans samedi entre 9h matin et 1h tantôt. Dans Rodrigue, ben centre pour ouvert de lundi à vendredi entre 3h30 et 5h tantôt et samedi de 9h matin à 1h tantôt. Et pas oublier, amène une carte d'identité et qu'un preuve l'adresse récente pour faire ou enregistrement. Ou capable aussi vérifier si ou non la liste électorale l'eau ou potable. Envoyez un SMS l'eau 789. Tape ELEC, l'espace, numéro code identité. Pour plus de détails, check site internet Bureau commissaire électoral et que se passe Facebook ou téléphone l'eau 800 20 10. Pour voter ou non, bizan l'eau la liste électorale.
3: Ou gagne sa bon parfum popcorn là Astère. Si me dis ou qui popcorn, c'est nouveau façon pour gagner cashback le shopping. Ou sauter tellement content non? Et ça cashback là, ou capable transférer direct le compte la banque et là ou décider qui ça non pour faire content avec ça petit casse là. Allons pas tarder. Download application Popcorn depuis Play Store ou App Store, scan ou ban récipient paiement et si dans au panier la man produit qui rapporte tout popcorn. Ça fait bon. Popcorn, fais la bouse doux.
4: Vite, follow Popcorn Maurice Lowe Facebook.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
6: Sports news, latest updates.
7: Sports news.
1: Radio Musti in the mix.
8: 4:42 होने को हैं आप जो रहे हैं RM2 Radio Musti के साथ अरविंद जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में उनको उनका हम स्वागत करते हैं with the sports updates. Good afternoon to you.
9: Good afternoon आपको. Good afternoon RM2 listeners. So जश्न जारी है. We are talking about the Europa League winning side Arsenal. So अभी Thursday जब टर्की से वापस आएंगे लंदन तो वहाँ पर एक ओपन टॉप बस उनका स्वागत करने के लिए और हजारों फैंस तो होंगे ही. अब ये तो इंग्लैंड में है लेकिन अफ्रीका में एक मिनी बस फुल ऑफ एस्टन विला फैंस ये लोग एक विलेज गाना के एक विलेज में सेलिब्रेट करेंगे. शायद मॉरिशस में भी बहुत हैं आर्सेनल के फैंस ये भी कुछ प्लान कर रहे होंगे. सो 30-year ट्रॉफी ड्राउट कल पूरा हुआ और इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाएगा आज. और उधर जिसे मैंने बताया गाना में 30 मोटरसाइकिल्स और मिनीबस विल बी ट्रैवलिंग थ्रू द गानियन विलेज ऑफ युआबेन. क्यों ना हो वहाँ पर हज़ार विला फैंस हैं और उनकी टीम जीत गई. दे आर सेलिब्रेटिंग. वैसे इसमें एक खिलाड़ी हैं प्रीमियर लीग विनर मंगलवार को और GCSE थर्सडे को. कैन यू इमेजिन ये जिसे मॉरिशस में GCSE माने स्कूल सर्टिफिकेट. तो आर्सेनल का खिलाड़ी उसका सेंसेशन टीनेज सेंसेशन

0: कहते हैं 16 साल का मैक्स डोमन, उसकी टीम के साथ वो चैंपियन बना ट्यूसडे को, और आज अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल गया हुआ है। सो अब देखेंगे, अब सेलिब्रेट करेगा फिर से आकर इस संडे को अपनी टीम के साथ, एंड दैट्स रियली गुड फॉर दिस यंग गाय। और एस्टन विला के बारे में तो हम बता ही रहे हैं कि ये टीम अभी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो गई है, और उसके उसके जीतने से एक और प्लेस, चैंपियंस लीग प्लेस इंग्लैंड को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एस्टन विला को हारना होगा। कैन यू इमेजिन, एक टीम एक ट्रॉफी जीतकर अपने देश इंग्लैंड को एक और चैंपियंस लीग स्पॉट दिलाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अगला मैच हार जाए। सो अगर एस्टन विला अपना अगला मैच हार जाए और लिवरपूल जीत जाए, सो द परमिटेशन विल बी सच कि लिवरपूल आ जाएगा फोर्थ पोजिशन पे, विला आ जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, और जब वो फिफ्थ पोजीशन पे है मींस बिलो टॉप फोर, तो ये जो यूरोपा लीग जो उसने जीता है वो स्पॉट आ जाता है। सो ही विल बी क्वालिफाइंग, एस्टन विला विल बी क्वालिफाइंग एज द चैंपियन ऑफ यूरोपा, और जो सिक्स प्लेस है अभी के लिए बोर्नमुथ, ब्राइटन भी आ सकते हैं, उसको भी ये स्थान मिल सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, डिलेमा तो है ही। वैसे डिलेमा की बात हुई तो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने से पहले इंग्लैंड के कोच टोमास टुखेल को ही हैज बिग कॉल्स, काफ़ी उसको सोचना पड़ेगा, और वो इंग्लैंड होपफुल्स को कॉन्टैक्ट करने लगा है, दोज हु हैव नॉट मेड द कट। ऐसे में कल फ्राइडे को स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, 26 फॉर्चुनेट पीपल विल बी देयर, और इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। जॉन स्टोन्स होगा टीम में या नहीं, अनदर बिग क्वेश्चन। इसमें हैरी केन, डिक्लेन राइस, ये सब लोग तो हैं ही, और स्टोन्स खेलेगा, दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड अपन। और याकेल क्वांशा, फिर चालोबा, तोमोगी, इन सभी को फ्रेंडीज में रखा गया था, लेकिन विल दे मेक द फाइनल कट, ये कल पता चलेगा। और इधर एफए ने साउथहैम्पटन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है ओवर द स्पाई गेट। आज सुबह आपको बता रहे थे साउथहैम्पटन को प्ले ऑफ फाइनल से निकाल दिया गया है फॉर स्पाइंग, इसलिए जासूस करना अच्छी बात नहीं है। आज जर्मन बुंडेसलीगा का प्ले ऑफ फाइनल है वुल्फबर्ग और पादेबोन के बीच। फिर अन्य चैंपियनशिप में भी मैच खेले जाएंगे। इंडियन सुपर लीग में आज इंटरकाशी ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर ओडिशा, मोहनबगन दिल्ली और पंजाब मुंबई। साथ साथ में कल भी काफ़ी मैच रखे गए हैं। इटली के सेरी आ में फ्लोरेंटीना अटलांटा, कुप दे फ्रांस का फाइनल कल होगा लॉन्स और निस के बीच। इतना कुछ फुटबॉल के बारे में। क्रिकेट के बारे में बता दें आपको, द आईपीएल 2026 रीचिंग इट्स एंड, और गुजरात टाइटन्स जो क्वालिफाई हैं फॉर द प्ले ऑफ, आज उनका मुकाबला होपफुल प्ले ऑफ होपफुल चेन्नई सुपर किंग्स से है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी नीचे है, टॉप फोर में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, और नीचे पांचवें पोजीशन पे पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये लोग भी बहुत दूर नहीं है। और आज के मैच के बाद हेर फेर हो सकता है इस टेबल में। That's it. The latest from the sports world.
1: Thank you so much for the updates, Arvind ji. वैसे हम थोड़ी देर बात करेंगे about the FIFA World Cup also. जुड़े रहिए हमारे साथ.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए United States, Canada. और मेक्सिको
3: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
0: चलो वर्ल्ड कप की ओर, एक के बाद एक स्क्वाड अनाउंस किए जा रहे हैं। अब तक बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, केप वर्दे, क्रोएशिया, कुरासाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, फ्रांस, आईटी, आइवरी कोस्ट, जापान, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, स्कॉटलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और चुनिजिया के स्क्वाड फाइनलाइज हो गए हैं। और आज हम बात करेंगे ग्रुप आई को लेकर। सो ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और

0: नॉर्वे हैं। फ्रांस के लिए ब्लू दो बार वर्ल्ड चैंपियन 1998 और 2018 में, पिछली बार रनर अप पेनाल्टी पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। इस टीम में ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ, किलियान एम्बापे, एंगोलो कांते, उस्मान देम्बेले, माइकल ओलीजे, गोलकीपर माइक मैग्नन, विलियम सलीबा, उपामेकानो, कुनाते, कुंडे, लुकास जी, चुआमेनी, डेजिरे डुए, रोयान चर्की, मातेता आदि नामी खिलाड़ी हैं। इनसे बच के रहना होगा, इस टीम से फिर से डरना होगा। मुर्गा अभी तक जवान है, बलवान है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सेनेगल की टीम वर्ल्ड कप में फोर्थ अपीयरेंस, 2002 में क्वार्टर फाइनल तक जा पाई थी। हाल ही में अफ्रीकन चैंपियन बनी थी सेनेगल की टीम, पर बाद में मोरक्को को चैंपियन घोषित किया गया। सेनेगल में साजो माने, कालिदू कुलीबाली और एडवर्ड मेंदी जैसे खिलाड़ी हैं। इराक वर्ल्ड कप में दूसरी बार 1996 के बाद 2026 की प्लेयर एमन हुसैन और अली यसीम। नॉर्वे फोर्थ अपीयरेंस वर्ल्ड कप में, इस टीम को इस बार यूरोप मोस्ट फॉर्मिडेबल गोल्डन जेनरेशन का नाम दिया गया है। क्वालिफिकेशन में अपराजित, फ्लॉलेस 8 विंस, इटली को भी नहीं छोड़ा। नामी खिलाड़ियों में मार्टिन ओडेगार्ड टीम का कप्तान, साथ में अर्लिंग अलोन इनका गोल स्कोरिंग मशीन, अलेक्जेंडर सोलोफ, योगन स्ट्रांड लॉसन, एक्सप्लोजिव अटैकिंग फ्रंटलाइन नॉर्वे के लिए। सो ग्रुप आई में फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे, काउंटडाउन जारी है, बचे हैं केवल 21 दिन। चलो वर्ल्ड कप की ओर।
1: Thank you so much about the information, and thank you so much for keeping us in the loop and updated about everything.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews, and latest updates. JG

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: वाओ।

0: अजीज कौर की आवाज में वेलकम, स्वागत है आप सभी का विद स्लीपी स्लीपी अखियां वैसी स्लीजी थर्सडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 21 मई 2026 दिस इज द सेकंड आवर ऑफ योर अवतार वाइब्स। कैसे हो यारो, आई होप यू हैप्पी, आई होप यू ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर ठीक भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके मूड को और भी ठीक बना देते हैं, रंगीन बना देते हैं। यहाँ पर जुड़ने के लिए थैंक यू।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: The right energy for you, गल्ला घोड़िया for you, ladies and gentlemen, आप जुड़े रहिए। बस थोड़ी देर में हम गेम शुरू करेंगे विद अब मुकाबला फॉर द MBC प्ले एप्लीकेशन।
3: मैं

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए जी, टेकर फ्रॉम द मूवी स्ट्रीट 2। बस इस गाने के बाद हम अपने लिसनर्स के साथ, हमारी जो मेहमान है उनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको सही जवाब देना है और बी द वन हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ड्रॉ।

0: Star Vibes, Filmy Rides,
1: RM2,
2: Radio Musti.
3: चलिए जी, यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि यू नो 5:30 बजे को हम खेलते हैं हमारे डियर लिसनर्स के साथ. एक तो लकी ड्रॉ बन गया है, यहाँ पर निकाला गया दो नाम. एक नाम है गणेश नाराज जी और दूसरा है अरवीना. हमने फ़ोन लगाया और बात की और अरवीना जी ने फ़ोन लगाया. वेरी गुड, उनसे बात हुई, वेरी नाइस. हम अरवीना से बात करेंगे थोड़ी देर में. यहाँ पर हमने बस कुछ और बारी मिलाया है गणेश जी के लिए और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. अनफॉर्चुनेटली हमको लेना पड़ रहा है ओनली अरवीना. अगर अरवीना के पास सही जवाब है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी फॉर द फाइनल ड्रॉ जो कि 29th को होने वाली है. हेलो जी अरवीना जी.
4: हाँ जी,
3: कैसे हो आप?
4: मैं ठीक हूँ.
3: और मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ आपसे बात कर रही हूँ. और खुशी की बात यह है कि आपके पास और कोई मुकाबला नहीं है, बस आप ही है और आपकी किस्मत आपके हाथ में है. क्या ये हेलीकॉप्टर राइड के ये जो फाइनल ड्रॉ में आप पहुँच पाएंगी आज? हाँ या ना? ओके, यहाँ पर आगे का क्वेश्चन, आप रेडी हो?
4: हाँ जी
3: जी. आप ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में है ये क्वेश्चन, आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है और सही जवाब देना है. एंड आई रियली होप कि आपके पास सही जवाब हो. ओके जी. सो ध्यान से, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट मस्ट बी क्रिएटेड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन? जवाब दीजिए.
4: MBC Play
3: का जो अकाउंट है, आपने वही डाउनलोड किया है, वही क्रिएट किया है, वही स्क्रीनशॉट भेजकर आप बने हैं द सिलेक्टेड वन. यस, कंग्रेचुलेशंस अरवीना जी. ओह यस, आप विजेता नहीं बनी हो लेकिन यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ड्रॉ. वहाँ पर भी 9 फाइनलिस्ट्स आपके साथ विल डू अ ड्रॉ एंड लकीली आई होप फॉर द बेस्ट कि आपका नाम निकल जाए और आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा. ओके जी, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सिलेक्टेड. बाय बाय.
0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: छो छमा छम छम्मा तम्मा अगेन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी से लिया गया ये गाना।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: सुपर सॉन्ग जस्ट टू कंटिन्यू दिस आफ्टरनून, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑफिस लुक और भी एलिगेंट बना सकते हो। यहाँ पर मोनोक्रोम ये जो आउटफिट्स है आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक ट्राउजर्स विद बेज ब्लाउज और या फिर सॉलिड कलर कुर्ती विद मिनिमल ज्वेलरी, क्या कहते हो आप, एक स्लीक वॉच और नीट हेयर स्टाइल जो पूरे प्रोफेशनल लुक को और भी ज़्यादा वाइब दे देता है, कंप्लीट भी कर देता है। वैसे यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस वेयर एंड ऑफ कोर्स दिस इज द फैशन टिप्स ब्रॉट टू यू बाय आरएमडी रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। आरएमडी
2: रेडियो मस्ती।

राघव चैतन्य की आवाज में जोनिता गांधी भी साथ निभाते हैं इस गाने को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने के साथ हम आपको सभी को हौंदी बू देने वाले हैं 6 बजे के बाद, यानी कि फॉर द लास्ट आवर 6:30 बजे समाचार खत्म हो जाएगा, देन हमारी जो शो है कंटिन्यू हो जाएगा। स्टे वेल कनेक्टेड, स्टे वेल ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती।

21 मई की तारीख गुरुवार की सायंकालीन बेला। स्वागत है आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। डालते हैं नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा। अब एक नया इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव, जो मौजूदा 15,000 रुपये की डिजेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस ने कल की रेट बढ़ाने का फैसला लिया। इसका असर अब आम लोगों और कारोबार पर भी पड़ सकता है। हाउसिंग लोन, गाड़ी लोन और दूसरे कर्ज महंगे होने की है आशंका। विदेशी कामगारों की भर्ती इन दिनों चर्चा का विषय। इस क्षेत्र में नए नियमों के तहत विदेशी कामगारों को लाने के लिए नियोक्ताओं को अब भर्ती एजेंसियों के जरिए ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पेचिकों, थ्रियानो और बगाटेल में कभी वीरान कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है। शुगर केन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। और विदेशी स्तर पर भारत के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्म रातें, पानी की बढ़ती मांग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर साफ दिखाई देने लगा है और पारा 48 डिग्रीज को पार कर चुका है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों की जाने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता में बदलाव लाया जाएगा। अब एक नया इंक्लूसिव लिविंग अलाउंस लाने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा 15,000 रुपये की डिजेबिलिटी पेंशन के अलावा दी जाएगी। इस नई सहायता में व्यक्ति के हैंडीकैप और उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। ये बात सोशल इंटीग्रेशन मंत्री ने 20 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग

0: लोगों की देखभाल और सहयोग पर आयोजित एक सिंपोजियम में कही। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: मॉरिशस में 86,000 लोग विकलांगता की स्थिति में जी रहे हैं। हर उम्र के लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था है, लेकिन युवा वयस्कों की बात अलग है।

0: कई विचार सामने आए। इनमें ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस एक्ट में सुधार शामिल हैं, जो 35 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी को अपने कम से कम 3% पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्य करता है। एक अन्य प्रस्ताव CSR फंड में वृद्धि की समीक्षा, जिसके तहत प्रत्येक कंपनी को पिछले वर्ष की अपनी कर योग्य आय का 2% योगदान देना अनिवार्य है। गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत थेरेपिस्ट भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें श्रम मंत्रालय के नेशनल रेम्यूनरेशन बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाए। अशोक सुभो ने सुझावों पर गौर करते हुए राष्ट्रीय नीति में सुधारों की घोषणा की। साठ प्रतिशत से कम विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए एक इंक्लूसिव यूनिट अलाउंस लागू किया जाएगा, यानी 15,000 के पेंशन के साथ साथ इच्छा यही है कि 7,500 तक का अलाउंस हम दे पाएं। चिकित्सा स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा NGOs नई राष्ट्रीय नीति लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, पहुंच सुविधा यानी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने और रोजगार हेतु प्रशिक्षण के पक्ष में हैं।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस ने कल की रेट बढ़ाने का फैसला लिया। इस फैसले का असर अब आम जनता और कारोबार पर भी पड़ सकता है। हाउसिंग लोन, गाड़ी लोन और दूसरे कर्ज महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। कई श्रमिक संघों ने आज एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसके दौरान विदेशी कामगारों के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठनों ने उनके लिए बेहतर नौकरी परिस्थितियों की मांग की भी की है। इसके अलावा आने वाला बजट, बढ़ती महंगाई और 40 घंटे के कार्य प्रणाली जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेशी कामगारों की भर्ती इन दिनों चर्चा में है और अक्टूबर 2025 से इस क्षेत्र में नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए नियोक्ताओं को अब भर्ती एजेंसियों के जरिए ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल मॉरिशस में 51,000 से ज्यादा विदेशी कामगार वर्क परमिट के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्यरत हैं। मॉरिशस में अवैध रूप से रह रहे 32 विदेशी कामगारों को आज गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ये कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे पूर्वी इलाके लावोंचे की एक डोमिटोरी में चलाई गई, जिसे ब्रिजवेजिया की CID ने अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए लोग बांग्लादेश, भारत और नेपाल के नागरिक बताए जा रहे हैं और उन पर मॉरिशस में अवैध रूप से रहने का आरोप है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर प्रिजनर जज सैयद मंसूर अली शाह ने इस गुरुवार को पोटलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। उनके साथ सीनियर काउंसिल और बॉ काउंसिल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान सैयद मंसूर अली शाह, जो इस समय लाहौर यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में संवैधानिक कानून के चेयर ऑफ एक्सेलेंस और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

0: उन्होंने मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इसके अलावा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के भी चर्चा हुई। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि पेचिको, थ्रियानो और बगातेल में कभी वीरान पड़ी कृषि भूमि अब फिर से हरियाली की ओर लौटती नजर आ रही है। शुगर केन ब्लॉक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी, सहकारी संस्थाएं और अन्य साझेदार इस क्षेत्र में गन्ना खेती को नई रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। साथ ही लंबे समय से कम उत्पादन और कठिनाइयों का सामना कर रहे छोटे खेतीहरों को भी सहयोग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत पेचिको के एक स्थल का दौरा किया गया। सहा ओनो की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा जानिए की का विवरण।
1: खेतों में पुनर्वास कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। उद्देश्य खाली जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना और उत्पादन को आधुनिक बनाना है। पेचिको, थ्रियानो और बगातेल में 800 से अधिक एकड़ खाली जमीन की पहचान की गई है, जहां 3 वर्षों में पुनर्वास किया जाएगा। किसानों के लिए ये पहल नई उम्मीद लेकर आई है, हालांकि इस क्षेत्र में अब भी कई कठिनाइयां मौजूद हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे खेत संभालते हैं, मुझे खुशी होती यदि कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चों के नाम किया होता। खेतीहरों ने कई सालों तक मेहनत की और थम गए। सरकार और MCI की मदद से शक्कर पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होगा। ये परियोजना मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी और कई कृषि साझेदारों द्वारा संचालित है, ताकि सामूहिक तरीके से भूमि को सींचा जाए, मशीनों के उपयोग को आसान बनाया जा सके और उत्पादन में सुधार आए। गन्ने के करीब 7,000 छोटे खेतीहर हैं, जिनकी 20% भूमि है, बाकी कॉर्पोरेट हैं। ट्रैक्टर, ड्रोन, राइपनर आदि का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति को स्प्रेयर देंगे तो वो शायद नहीं लेगा, लेकिन ड्रोन स्प्रेयर दिन में 25 एकड़ जमीन पर काम करता है, उसका इस्तेमाल वो जरूर करेगा। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने गन्ना क्षेत्र को संरक्षित करने और उसे आधुनिक बनाने के महत्व पर जोर दिया।
2: L'objectif c'est produire 250 000 tonnes de sucre, mais nous visons augmenter ce qu'on appelle sucre spécial.
1: मकसद है 2.5 लाख टन शक्कर की पैदावार, स्पेशल शुगर बढ़ाना होगा। ड्रोन से जानकारी मिलती है, हम गन्ना उत्पादन में माहिर हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में हम ये सेवा देते हैं। शक्कर उत्पादन से परे इस परियोजना का उद्देश्य कृषि भूमि प्रबंधन के लिए अधिक टिकाऊ और बेहतर योजना वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
0: दुनिया भर में अस्थमा बीमारी से पीड़ित 350 मिलियन लोग से ज्यादा हैं। मॉरिशस में एक चेस्ट क्लिनिक है, जहां पर अस्थमा बीमारी से पीड़ित लोग इलाज पाने के लिए जाते हैं। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: सांस लेना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन दुनिया भर में 350 मिलियन से अधिक ऐसे लोग हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं। ये एक पुरानी इन्फ्लामेटरी बीमारी है, जिससे कि सांस लेने का मार्ग पतला होता जाता है और हर बार सांस लेने में परेशानी होती है। पोर्ट लुइस में एक सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिक है, चेस क्लिनिक, जहाँ पर इससे संबंधित विशेष सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तागोब नीलापन ने सभी ज़रूरी जाँच की, जिसके बाद उसे पता चला कि उसे अस्थमा है। अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक दीर्घकालिक श्वास की बीमारी है, जिसमें वायु मार्ग में सूजन और संकुचन के कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। सीने में जकड़न, लगातार खांसी होती है। कई बातों से अस्थमा के लक्षण शुरू हो सकते हैं या ये गंभीर भी हो सकता है। बेहतरीन इलाज बचाव है। जिन लोगों को एलर्जी है, बाद में ठीक से सांस न ले पाने के कारण लक्षण दिखने लगते हैं, साथ में पर्याप्त

0: पर्यावरण संबंधी कारण भी हैं, जैसे कि प्रदूषण, तनाव आदि। मरीज को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि स्थिरता चरण कब है और कब स्थिति बिगड़ रही है, ताकि समय पर वो अपना इलाज करवाएं, बचाव कर सके। पंप का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अस्थमा होने पर दैनिक तौर पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एक सामान्य जीवन जी सकते हैं।
1: अज़रबैजान में राष्ट्रपति धर्मगोकुल ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मगोकुल ने कहा कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अब भी उचित आवास सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने अधिक समावेश और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्हें सुनते हैं।
2: A formidable and unprecedented humanitarian challenge indeed.
3: ये एक अभूतपूर्व और वृहद मानवतावादी चुनौती है। ऐसी चुनौती जो मानव सम्मान, सामाजिक स्थिरता और टिकाऊ विकास पर आधारित है। ये फोरम सही समय पर आया है, जिसमें अनुभव, ज्ञान और प्रथाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, ताकि टिकाऊ नगर योजना और विकास को बढ़ावा मिले। दुनिया भर में शहर तेज गति से विकसित हो रहे हैं, लेकिन ये विकास बिना किसी योजना के असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के स्तर पर लाभप्रद नहीं। इससे संभावनाओं और वास्तविकताओं के बीच अंतर और बढ़ रहा है। आवास आज पनाह देने से ज्यादा अहम है। ये मानव के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और सम्मान की बात है। यदि हम टिकाऊ मानव विकास प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवास और नगर नियोजन चर्चा के केंद्र में होने चाहिए।
2: Experience of families. Housing is today more than shelter. It is a basic human need and human dignity. If we are to achieve a sustainable human development, housing and urban planning must be at the heart of public policy.
1: मॉरिशस के सरकारी अस्पतालों में इलाज की नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले दो हफ्तों में दो विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मॉरिशस आए हुए हैं, जिन्होंने यहां की मेडिकल टीमों के साथ अपना अनुभव साझा किया। दिल से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल माघवरी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉन्सन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई प्रक्रियाएं की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। विपक्ष के विप एड्रियन जुवाल ने पोर्ट लुई स्थित अपने दफ्तर में प्रेस को संबोधित किया। यह राष्ट्रीय सभा में मंगलवार को उठाए गए उनके सवालों के बाद हुआ। एड्रियन जुवाल का कहना है कि कई मामलों में सरकार को और ज्यादा पारदर्शिता दिखानी चाहिए। मॉरिशस के हाजी अब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और कई शहरों में हज से पहले की आखिरी तैयारियां चल रही हैं। 24 मई से शुरू होने वाले हज में इस साल करीब 1500 मॉरिशन लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस पाक सफर को लेकर हज अदा करने वाले लोगों में खुशी और खास उत्साह देखा जा रहा है। और विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, भारत के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्म रातें, पानी की बढ़ती मांग और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है और तापमान 48 डिग्रीज को पार कर चुका है। ज्यादा विस्तार आस्था गोबिंद के साथ।
4: भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना समेत कई राज्य इस भीषण हीट वेव का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले कई दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। भीषण गर्मी का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, लोग घरों

0: में रहने को मजबूर हैं और बिजली तथा पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वी भारत और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल देश के बड़े हिस्से में गर्मी से राहत के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। लगातार बढ़ती चरम मौसम परिस्थितियां जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती की ओर भी संकेत कर रही है। आने वाले वर्षों में ऐसी ही भीषण गर्मी की घटनाएं और बढ़ सकती है।
1: कई दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 दिनों के दौरे पर रही, जिसके ठोस परिणाम सामने आए। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा केवल दोनों देशों के संबंधों तक सीमित नहीं रही, अपितु बदलते वैश्विक हालात, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आस्था गुबिन।
0: इटली दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच विस्तृत बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति, रूस यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम रहा भारत और इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाना, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग का संकेत माना जा रहा है। बैठक में रक्षा सहयोग, आधुनिक टेक्निक, AI, अंतरिक्ष, शिक्षा, संस्कृति और समुद्री सुरक्षा जैसे सेक्टरों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन और नई टेक्निक के संयुक्त विकास पर भी जोर दिया। साथ ही अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत निर्माण और समुद्री संपर्क जैसे सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने की दिशा तय की गई।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
0: व्यापार और निवेश भी इस यात्रा का अहम हिस्सा रहा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और इटली ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिनमें रक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति और लोगों के आवागमन से जुड़े क्षेत्र शामिल रही। स्वास्थ्य सेक्टर में भारतीय नर्सों के लिए इटली में नए अवसर खुलने की संभावना जताई गई। वहीं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर सहमति बनी। समुद्री सहयोग को लेकर भी दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने का फैसला लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच ये सहयोग आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकता है।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कोंगो में फैल रहा इबोला वायरस अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मौजूदा प्रकोप कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार वायरस का जो प्रकार सामने आया है उसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है, परंतु दबाव में झुकने वाला नहीं है। आस्था गुबिन।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अगर सही जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बहुत जल्द कड़े कदम उठा सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों

0: में अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों की संभावना पर भी विचार किया था, लेकिन गल्फ देशों की अपील और मध्यस्थता प्रयासों के बाद फिलहाल उन योजनाओं को रोक दिया गया है। उधर ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका की ओर से प्रस्ताव मिले हैं और उनकी समीक्षा जारी है। तेहरान का कहना है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नए संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इस बीच कतर, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान जैसे देश तनाव कम कराने की कोशिशों में सक्रिय बताए जा रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के तेहरान दौरे को भी इसी कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां एक ओर अमेरिका दबाव और बातचीत दोनों रास्ते खुले रखे हुए हैं, वहीं ईरान भी साफ संकेत दे रहा है कि वो बातचीत चाहता है लेकिन किसी दबाव में फैसला नहीं करेगा।
1: अब फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। इस्तांबुल में यूरोपा लीग फाइनल पूरी तरह एस्टन विला के नाम रहा। एमबीसी स्पोर्ट्स के 11 चैनल पर दिखाए गए इस मुकाबले में इंग्लिश क्लब ने फ्रीबर्ग को 3-0 से हरा कर पहली बार यह बड़ा यूरोपियन खिताब जीत लिया। और आपको बता दें कि शुरू से आखिर तक एस्टन विला का दबदबा साफ नजर आया और टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने समर्थकों को यादगार जीत का तोहफा दिया। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम की ओर से बादलों का एक झुंड कल सुबह से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से एक एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की ओर आ रहा है और कल दोपहर को हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात थोड़े से बादल घेराएंगे जबकि कल सुबह दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:39 पर जबकि कल सूर्योदय 5:39 पर जबकि कल सूर्योदय 6:34 पर।

0: देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आयुषोक समाचार सुनते हैं। रारोद प्लेम्बुआ लिस्कालिये में, रारोद प्लेम्बुआ लिस्कालिये में 83 साल की, 83 years old की श्रीमती ज्ञानती गोइंडो, जिन्हें सब लोग ज्ञानती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री बुलदेवा मुकेश के घर रारोद प्लेम्बुआ लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शिवाला रोड लावोंचुए में 73 साल के, 73 years old के श्री पुरन लचन, जिन्हें सब लोग रामेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री सुदेश लचन के घर शिवाला रोड लावोंचे से

0: उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडुमास का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। रॉयल रोड फ्लोरियाल में 62 साल के 62 years old के श्री सत्यानंद राज सनमुखिया जिन्हें सब लोग मतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजोदोरोज फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो आफ्टरनून एट 2। रामदीन लेन ऑंग्रे कातन ओकुले में 44 साल के 44 years old के श्री प्रेम किशन मनराज जिन्हें सब लोग विकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के घर रामदीन लेन ऑंग्रे कातन ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Laughter Vibes, Filmy Rides,
3: RM2, Radio

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए जी, अनदर रोमांटिक ट्रैक कमिंग अप फॉर यू, हैप्पी बट रोमांटिक, अरिजीत सिंह एंड अफसाना खान के आवाज में। तू है तो मैं, स्काई फोर्स मूवी से। ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव से।

0: अगर आप हमसे पूछेंगे पर्सनली तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमारा दिल भी आपके बिना नहीं लग रहा था और इसलिए तो बस बहाने मारकर हमने ये गाना चला लिया आपको बताने के लिए कि आपको हम कितना मिस कर रहे थे। वैसे आप लोगों के बिना जब दिल नहीं लगता है तो हम बहाने ढूंढकर भी आप लोगों से मिलने के लिए आ जाते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। लवली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड चलिए बिग थैंक यू टू मनीष माँ एंड उनकी बारी के बाद ऑफ कोर्स इट्स टाइम फॉर दिव्या टू एंटरटेन यू टिल 9 PM जहाँ पर हम आपके फ़ोन कॉल्स को भी वेलकम करेंगे। वैसे कल घर जाते जाते मनीषमा को भी सुन रही थी, काफ़ी लोगों ने उनको फ़ोन किया और टांग खिंचाई भी हो रही थी, तो चलिए आप भी हमें ज़रूर फ़ोन करिएगा ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस और फ़ोन करने के लिए 4028-2035 पर आप हमें ज़रूर फ़ोन करें और कुछ आपस की बातें और आपस के जज्बात को हम शेयर करते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वेल 7:12 हो चुके हैं। टू ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको तो पता है कि हम मिस नहीं करते हैं आपको विश करने के लिए बन अपेची शुभाहार। और जानकर बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फ़ोन करते हैं और आप कहते हैं कि हमारा डिनर तो हो गया और भी बस रिलैक्स होकर रेडियो मस्ती का साथ दे रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हमें अपना मानने के लिए और आपके दिल में छोटी सी जगह देने के लिए। इट रियली मींस अ लॉट। थर्सडे इवनिंग 21 मई 2026 और ऐसे में दिव्या साथ निभाने के लिए आ चुकी हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमें एक फ़ोन कॉल आया एंड दैट वाज गिरीश हरलोल जी, एंड कह रहे थे कि कल मनीषमा से बात हुई थी तो आज उन्होंने फ़ोन किया ऑफकोर्स हमसे थोड़ी बातें करने के लिए। एंड उन्होंने गाना मांगा फ्रॉम द मूवी सपने साजन के, ये दुआ है मेरी रब से, कुमार सानू का गाया हुआ। तो चलिए गिरीश जी, ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू, एंड मुझे पता है कि आप कुमार सानू जी को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये अगला गाना गुजार स्पेशली आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए और जो लोग आपको जानते हैं, ये गाना भी उनके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप इस वक्त हमें रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि मैसेजेस भेजने का नंबर है 5499-1294 एंड इस नंबर पर प्लीज़ हमें फ़ोन ना करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स लाइन खुली हुई है ऑन 402-803-5-402-8035।
1: इवनिंग लाउंज RM2 रेडियो मस्ती।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना तेज मूवी से लिया गया, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। और चलिए, ये मूवी का टाइटल शायद आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको एहसास हो ही जाएगा कि ज़िंदगी सच में बहुत ही तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है और आपको थोड़ा सा संभल जाना है। और कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, हाँ, वक्त को हम बस काबू में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके ना थोड़ा सा वक्त निकालें अपनों के लिए और उनको बहुत बहुत ही स्पेशल फील कराएं। ये तो हमेशा हम आपसे कहते रहते हैं, क्योंकि बार बार शायद आपके परिवार वाले भी आपसे ये कहते रहते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उनको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और बहुत कुछ बोलने के बावजूद भी हम ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन यू हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट ताकि आप भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत करें टू इंक्रीज द लव डोज एवरी डे। चलिए, हम अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको गाने सुनाकर। वेल यहाँ पर अनुषा का फ़ोन आया था फॉर ए साइड, हमेशा आपके मैसेजेस आते रहते हैं लेकिन आज उन्होंने फ़ोन किया और शी वॉज़ अ बिट शाई टू बी ऑन एयर। क्या बात है, आज आप लोग थोड़े शर्मा रहे हैं। वैसे गिरीश जी ने भी कहा कि आज नहीं नहीं, आज बात नहीं करना है ऑन एयर, बस ऑफ एयर बात किया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, यहाँ पर अनुषा वॉन्ट्स टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर हस्बैंड विमल, बेटी परी, फ्रेंड है पूनम, चाचा अनिल, दादी मीला, बॉस ऋषि, और इस वक्त आप मिलकर सुपरमार्केट में काम कर रही है। तो अनुषा, आपको बोंकुहाज। और अनुषा कहती है कि क्या गाने चल रहे हैं, सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अनुषा, ये अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू। वैसे हमने पूछा कि अनुषा को कौन सा गाना सुनना है, तो उन्होंने कहा कि आपकी पसंद का कोई भी गाना चला दीजिएगा, तो आई एम वेरी श्योर कि आप अगला गाना ज़रूर पसंद करेंगे और इसमें आपका नाम हम ज़रूर जोड़ रहे हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: रब का शुक्राना कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और एवरी डे जब आपके मैसेजेस आते हैं वी फील रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप जैसे खूबसूरत एंड वंडरफुल लिसनर्स हमारे पास हैं। चलिए यहाँ पर अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर राधा जी ऑफ कनाडा। नमस्ते आपको भी एंड आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। राधा जी ने किशन जी का प्रोफाइल पिक्चर डाला है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यू एंजॉइंग द शो एंड आपने लिखा भी है कि एंजॉइंग द ऑसम प्लेलिस्ट एंड शो एंड आपने गाना मांगा है हर तरफ तू ही दिखे। वैसे लेट मी टेल यू राधा जी कि ये गाना हमारे अगले हफ्ते के प्लेलिस्ट में तो है ही, बट हम देखेंगे इफ वी कुड एडजस्ट इट फॉर टुडे तो हम ज़रूर चलाएंगे, और वक्त की वजह से अगर हम नहीं चला पाएँ तो अगले हफ्ते ज़रूर आपको हम ज़रूर ये गाना सुनाएंगे। बिंदिया कालू आप हैं मेलजान गुडलैंड से। नेक्स्ट गाना जाएगा स्पेशली फॉर बेटे सानी स्वयं एंड सभी कालू फैमिली के लिए, एंड वी हैव श्वेता हुकुम ऑफ बनाकर। आई वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर बिलवड हबी रोशन फ्रॉम वाइफी रानी एंड वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई लव यू सो मच हस्बैंड जी। क्या बात है, ऐसे ही प्यार को आप बढ़ाते रहिएगा मैसेजेस के जरिए और बाय एक्सप्रेसिंग योर लव। हेलो प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय मॉम सुरेखा नानी लीलावती फ्रॉम लवली डॉटर वर्षा। तो चलिए नानी और मम्मी के लिए अगला गाना खास तौर से, एंड साथ में जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, वेल थैंक यू सो मच। वी ऑल्सो हैव द नेक्स्ट गाना फॉर करिश्मा जो मे बी इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, क्योंकि आपको हमेशा कोई है ख़ास जो आपको याद करता रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं दैट यू आर कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती टिल 9 PM दिव्या का साथ है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो waiting for your phone calls on 402-8035-402-8035.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio.

0: प्यार की जज्बात, प्यार के एहसास कुछ ऐसे होनी चाहिए जहाँ पर आप बार बार यही कहें कि आई लव यू लाइक क्रेजी। चलिए यहाँ पर इस दीवानीपन को हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आप अपनों को ज़रूर याद कर रहे होंगे और अपनों के नाम भेजिए प्यारा सा पैगाम ऑन 5499-1294। या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फ़ोन करने का नंबर है 4028035-4285। फिलहाल के लिए उर्वशी जी ऑल सेट हैं हमसे बात करने के लिए। प्रणाम उर्वशी जी, नमस्ते आपको।
1: कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
1: ठीक हूँ, ठीक हूँ।
0: सब कुछ अच्छे से चल रहा है लाइफ में?
1: ठीक ठीक।
0: चलिए, जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और आपने खाना खा लिया?
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बिल्कुल अच्छी बात है। और आपको तो पता है ना, हमेशा हम ये पूछते हैं क्योंकि लेट डिनर खाना अच्छी बात नहीं होती है, ये तो हमेशा हम कहते हैं। तो उर्वशी जी बताइए, आज कौन सा गाना सुनेंगे और किसके नाम?
1: किस मोर पे आती है फिल्म आंधी?
0: आंधी, ओके। वैसे तो हमने लास्ट टाइम बोला था अगर हो सके तो कोई 90s या फिर नया गाना, लेकिन चलिए आपके लिए आज हम चला ही लेंगे।
1: मेरे लिए
0: खास तौर से आपके नाम हम चलाएंगे जरूर। एंड ये गाना किसके नाम?
1: मेरे लिए।
0: I really like this spirit. वैसे ये बहुत अच्छी बात आप करती हैं उर्वशी जी, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे प्यार दे पाएंगे? ये सही बात है ना। तो इसलिए आप जब भी गाना मांगते हैं और आप कहते हैं कि मेरे लिए, तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ ये सोच के कि आप अपने अंदर में कितने सेटिस्फाइड हैं, कि मतलब आपको गाना सुनना है और खुशी होना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। गुड नाइट आपको, शुभरात्रि, शब्बा खैर। तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, थोड़ी सी शर्मीली, ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव ऑरा है इनका, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी खुद के बारे में सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खुद को खुश करना भी लाजमी बात है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप बार बार अपने दिमाग को थकाते रहेंगे कि इसको कैसे खुश करना है, उसको, दूसरों को कैसे खुश करना है, लेकिन कभी कभी आप खुद के बारे में सोचे तो आप देखेंगे कि

0: आप राहत की सांस लेंगे. वेल वी हैव दिस नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम उर्वशी जी, लेकिन इससे पहले हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आवर में.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
5: Radio Masti.
6: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Masti.
6: Feel the Masti.
0: घर मिलाते चलिए, रात्रि के 8 बजे हैं.
7: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre aux ban questions climatiques qui concernent nous pays et nous planète. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 23 mai pour la suite compétition débat climat à partir 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
8: Evening Lounge.
9: Evening Lounge.
6: RM2.
5: Radio Masti.

0: उसी मोड़ से होकर आपको फिर से गुजरना होता है। वैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया गोल है, एक टाइम पे जो आपने खोया था वही चीज़ आपको वापस मिल जाता है, लेकिन बाद में ये आपका चॉइस बन जाता है कि आपको वो चीज़ वापस चाहिए होता है कि नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बार गलती करो तो उसको गलती कहते हैं, दो बार करो तो इसको आदत कहते हैं। इसीलिए एक बार जो आपने गलती की है उसको सुधारने के लिए आपको एक ज़िंदगी की सीख ही काफ़ी होती है, और अगर बार बार गलती करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने इस सीख से कुछ सीखा ही नहीं है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसानों को भी गलती करनी चाहिए ताकि आप बाद में आपको एक चॉइस मिले और आपको ये भी एहसास हो कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कितने बदल चुके हैं। वेल 8:07 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड इवनिंग वंस अगेन। दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM, जहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका फेवरेट शो जो है इवनिंग लाउंज। तो चलिए हमारा और आपका साथ है, और आपके कुछ मैसेजेस ऑन 5499 1294। आई नो कि अभी थोड़ा बिजी टाइम होता है कुछ कुछ लोगों को, क्या होता है आपको डिनर हो जाने के बाद शायद आप अपने ऑफिस के काम को घर पे भी लेकर आते हैं, और ऐसे में काम का प्रेशर आप घर पर भी फील करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी वी कांट हेल्प इट। एंड चलिए आपको बोको हार्ट टोल्ड दोज वर्किंग राइट नाउ, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर ड्राइव करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ एंड अ म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे टिल 9 PM खूबसूरत गीतों के साथ।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

वैसे दोस्तों कहते हैं कि प्यार क्या कुछ नहीं करता है, एक अच्छे खासे इंसान को बस बदल कर रख देता है। अभी अगर आप मुझसे कहेंगे कि प्यार में कोई अच्छे के लिए बदल जाता है तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत होंगी, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि प्यार में कुछ लोग थोड़े

0: बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन आपसे हम सहमत नहीं होंगे क्योंकि प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हमेशा किसी को संवारने के लिए ही आता है और ज़िंदगी को और भी ख़ास बनाने के लिए वो प्यार का एहसास तो ज़रूरी है ही। चलिए उम्मीद करते हैं कि उसी प्यार से, उतने ही प्यार से आप हमारा साथ दे रही हैं, लिसनिंग टू ईच एंड एवरी गाने एंड बस साथ में गाते गुनगुना रही है। वेल, बढ़ेंगे आपके कुछ और मैसेजेस की ओर। हेलो नमस्ते जी, पूनम उबिलक आप है मिडलैंड से, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर बेटी येशना हर्षा और आप के बेटे हैं कुशल साहिल और आपके फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से फॉर अनुषा चाचा अनिल चाची और आपके बॉस ऋषि के लिए एंड goes out especially to each and every one connected with us. वैसे गाना मांगा है आपने आज भी टू फॉर इन द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा, अगर पॉसिबल हुआ तो आपका ये हम गाना चलाने की कोशिश करेंगे, बट वी डोंट प्रोमिस क्योंकि वक्त अभी ज़्यादा नहीं है हमारे और आपके दरमियाँ एंड काफ़ी लोगों ने कुछ गाने रिक्वेस्ट किए हैं। हाय बेटी नमस्ते, एक गाना मांगना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए एंड मम्मी के लिए, आपने बहुत बहुत ही प्यार भेजा है तो चलिए उनके लिए ख़ास तौर से हम ज़रूर ये अगला गाना डेडिकेट करेंगे और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जाएगा स्पेशली आपके नाम। आप कहते हैं हाय प्लीज प्ले अ बर्थडे सॉन्ग, अ स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम ओके जहां पर आप काम करते हैं, आपकी टीम की तरफ से आप बस विश करना चाहते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिसेज सिद्धि नामदे ऑफ गुजरात इंडिया एंड अभी हॉलीडे मनाने आई हैं इन मॉरिशस और इस वक्त आप होटल में ठहरे हुई हैं एंड स्पेशली फ्रॉम योर गाइड ड्राइवर मिस्टर देव की तरफ से आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सिद्धि नामदे जी एंड चलिए गुजरात से आप आई हैं एंड छुट्टी मनाने आई हैं तो आई जस्ट होप कि अभी यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड आई जस्ट होप कि मॉरिशस आपको अच्छा लग रहा है और बिल्कुल हाउ कैन वी मिस द अपॉर्चुनिटी सेइंग वेलकम टू मॉरिशस। तो चलिए सिद्धि जी आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये अगला गाना गोज़ आउट स्पेशली टू यू एंड साथ में यहाँ पर आप कहते हैं हाय चांदनी पुरुषोत्तम हियर, आज पापा प्रेम चावती का बर्थडे है, ऑलरेडी 80 years बट अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस फॉर अ बोर्ड ऑलरेडी 1 year। तो चलिए उनके लिए अगला गाना ज़रूर हम डेडिकेट करेंगे, फ्रॉम वाइफ सीता, बेटे हैं प्रीतम पृथ्वी, बेटी चांदनी, बहू दामाद, आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन है, सभी चावती फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं और हमेशा हम कहते हैं ना कि आँखों से बहुत ही दूर लेकिन दिल के बहुत ही करीब, अभी ज़िंदगी का दस्तूर यही है कि कुछ कुछ लोगों के बिना हमें जीना है तो यही सही, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके पापा ज़रूर ही इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम above and I guess he's now your guardian angel. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर जो हमें राधा जी ने बहुत ही प्यार से ये रिक्वेस्ट भेजा था और ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। तो चलिए राधा जी ये गाना गुज़ आउट स्पेशली आपके नाम।
1: Evening lounge,
2: evening lounge,
3: RM2
1: Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: वैसे एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर हम करना चाहते हैं कि जब भी आप गाने मांगे तो कोई भी 90s या फिर कोई नया गाना आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एंड चलिए कुछ कुछ ऑफ कोर्स वी हैव सम ऑफ द ब्यूटीफुल ओल्डीज जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो मोहम्मद रफ़ी साहब एंड मुकेश साहब की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना सात चूबे इस दुनिया में. एंड अभी थोड़ी देर पहले सुनीता जी का फ़ोन आया फ्रॉम तेहूज. क्या बात है, आज आप लोग काफ़ी हिचकिचा रहे हैं.

कोई बात नहीं, ये गाना खासतौर से आपके नाम सुनीता जी, कहती हैं कि तमाम पूरे परिवार के लिए, खासतौर से केवल परिवार के लिए जो तैगूर से ही हैं एंड जितने भी सारे लोग आपको जानते हैं उनके नाम भी ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं, आपके बेटे के लिए, बहू के लिए, पतिदेव के लिए, सब लोगों के लिए आपने गाना मांगा है। और सुनीता जी ने कहा है स्पेशली ये गाना चला देना क्योंकि ये गाना सुनकर ही हम लोग खाने वाले हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा देर भूखे नहीं रखेंगे, ये गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू एंड ऑल योर फैमिली।

0: वेल थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हमारी प्यारी सी राधा जी का मैसेज आया है, यू आर द बेस्ट, क्योंकि आप इतने प्यार से साथ दे रहे हैं, वो भी सात समंदर पार, जानकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड हमने कहा था कि वी डोंट प्रॉमिस अगर आपका ये गाना हम चला पाएंगे, बट फिर दिल ने कहा कि इतने प्यार से आपने हमें याद किया तो क्यों हम भी एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएं। और वैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार में थोड़ा बहुत एफर्ट डालना तो बनता ही बनता है, तो ये हमारी छोटी सी कोशिश आपकी स्माइल को और भी ब्रॉड एंड वाइड बनाने के लिए। चलिए साथ में अगला गाना खास तौर से हम नाम जोड़ना चाहेंगे फॉर महजबीन फ्रॉम समवन हु लव यू द मोस्ट। अभी ये स्पेशल इंसान का क्या नाम है अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इन्होंने नहीं बताया, बट आई जस्ट होप कि अगर आप इस वक्त हमें सुन रही हैं महजबीन, नो दैट यू आर वेरी वेरी लकी, एंड आई जस्ट होप कि वो स्पेशल समवन विल डेफिनेटली एक्सप्रेस हिज लव फॉर यू वेरी सून।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: अब हम भी क्या करें, दिल थोड़ा मजबूर है, लेकिन क्या करें, हम जा रहे हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए और दूसरी मुलाकात को और भी ख़ास बनाने के लिए। ऑलरेडी 8:52 एंड चलिए अगले गाने के साथ साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाई टू ऑल ऑफ यू एंड हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम, लेकिन कल के लिए ऑफकोर्स कुछ धमाकेदार गीतों के साथ विल बी एंटरटेनिंग यू बिकॉज इट विल बी अ फ्राइडे इवनिंग और ज़रूर पार्टी मूड को हम ऑन रखेंगे टिल 9 PM। तो चलिए अभी के लिए आप माइंड को फ्रेश रखें एंड जस्ट गेट प्रिपेयर टू गो टू वर्क टुमारो एंड आपको को आज कल के लिए, क्योंकि रात को ही हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए ज़रूर होप कर रहे हैं कि आप कल इवनिंग को हमें फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि हाउ वाज योर डे। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।
1: Evening Lounge. RM2. Radio Musti.

सर्दीली रात है, प्यार और गीतों की छाव में आप पनाह लिए हुए हैं। सो नीदू विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका रेडियो मस्ती की लहरों पर। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड इस सर्दीली रात को और खूबसूरत रोमांटिक यादगार बनाते हुए वेलकमिंग यू ऑल इन लेट नाइट ग्रूव्स। सो वेरेवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड, स्टे वेल कनेक्टेड और 3 घंटों के सुरीले सफर में हमारे हम सफर बने रहे।

बात हो रही है तो बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इमोशंस, सपनों और रंगों की एक खूबसूरत दुनिया है। यहाँ हर फिल्म एक कहानी के साथ साथ एक एहसास लेकर आती है। कभी प्यार का रंग होता है, कभी दोस्ती की मिठास, तो कभी परिवार की गर्माहट और कभी जिंदगी की सच्चाई। बॉलीवुड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हर इंसान को अपने साथ जोड़ लेता है, चाहे कोई गांव में हो या शहर में, हर किसी के दिल में बॉलीवुड के गाने और डायलॉग्स बस जाते हैं।

बॉलीवुड म्यूजिक की बात ही कुछ और है ना? पुराने जमाने के सोलफुल मेलोडीज या आज के इनर्जेटिक ट्रैक्स, हर जेनरेशन के पास अपने फेवरेट गाने होते हैं। एक अच्छा बॉलीवुड गाना सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। सैड सॉन्ग्स दिल का दर्द बयां कर देते हैं और रोमांटिक सॉन्ग्स मोहब्बत को और हसी बना देते हैं। इसी वजह से बॉलीवुड का म्यूजिक दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज करता है।

बॉलीवुड की फिल्मों में जो इमोशंस दिखाए जाते हैं वो बहुत असली लगते हैं। माँ का प्यार, दोस्ती की वफादारी, लवर का इंतजार और फैमिली बॉन्ड, सब कुछ इतनी खूबसूरती से दिखाया जाता है कि ऑडियंस खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगती है। इसी इमोशनल कनेक्शन की वजह से बॉलीवुड हर जनरेशन के साथ जुड़ा होता है।

गाने तो मस्त चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सिर्फ स्टार्स नहीं होते हैं, बल्कि लोगों के इंस्पिरेशन भी होते हैं। आपके भी तो कोई ना कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस रहे होंगे। उनकी मेहनत, डेडिकेशन और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को मोटिवेट करती है। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक और शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक, हर सुपरस्टार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके डायलॉग्स, स्टाइल और एक्टिंग ऑडियंस के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। साथिया, साथिया, मधुर।

ये एक फिल्म और हर एहसास के लिए एक गाना मिल जाता है। इसी वैरायटी की वजह से बॉलीवुड कभी बोरिंग नहीं लगता। हर फ्राइडे एक नई कहानी और एक नई दुनिया लेकर आता है।

थैंक यू सो मच हाँ हमारे हम सफर बनने के लिए एंड काम पर होंगे बोको आज घर वापस लौट रहे हैं प्लीज ड्राइव केयरफुली। बॉलीवुड की दुनिया में फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है। होली के रंग, दिवाली की रोशनी, शादियों का धूम धड़ाका और फैमिली फंक्शंस की वार्म्थ ऑडियंस को अपनी कल्चर से जोड़कर रखती है।

सॉन्ग्स एंड मूवीज होते हैं उनमें जो लोकेशंस दिखाई जाती हैं वो भी एक अलग ही चार्म क्रिएट करते हैं। कश्मीर की वादियाँ, मुंबई की चमक, राजस्थान के महल, फॉरेन लोकेशंस लाइक स्विट्जरलैंड, पेरिस और इवन मॉरिशस की ब्यूटी स्क्रीन पर एक मैजिकल दुनिया बना देती।

आज के गानों को तो हम मस्ट एंजॉय करते हैं, बट पुराने बॉलीवुड का अपना अलग ही जादू था। 50s, 60s, 70s, 80s के गानों में जो सिंप्लिसिटी और सोल थी वो आज भी दिल को सुकून देती है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का एलिगेंस, मीनफुल लिरिक्स एंड सॉफ्ट मेलोडीज आज भी एवरग्रीन लगते हैं। पुरानी फिल्मों का चौंक कभी पुराना होता नहीं।

बॉलीवुड की कॉमेडी भी लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। बीट महमूद, जॉनी वॉकर, कादर खान, गोविंदा, जॉनी लिवर, इन सभी कलाकारों ने ऑडियंस को हंसाने का जो अंदाज था वो अनफॉरगेटेबल है। कभी कभी एक फनी बॉलीवुड सीन पूरे दिन का स्ट्रेस दूर कर देता है। रियली होप कि ये गाने जो हैं आपके स्ट्रेस को दूर

पहुंच गए हैं हम इन द लास्ट आवर. थैंक यू सो मच. एंड बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता बल्कि जिंदगी की सीख भी देता है. कई फिल्मों ने हमें फैमिली वैल्यूज, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी एंड पॉजिटिविटी का इम्पोर्टेंस समझाया है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जैसे डायलॉग्स लोगों को लाइफ में होप एंड करेज देते आ रहे हैं.

ऑफ कोर्स बॉलीवुड की रोमांटिक स्टोरीज हमेशा लोगों के दिल के करीब रही हैं। हीरो और हीरोइन का प्यार, बारिश में गाने, इमोशनल रियूनियंस और ड्रीमी मोमेंट्स ऑडियंस को एक मैजिकल फीलिंग देते हैं। इसी रोमांस की वजह से बॉलीवुड को दुनिया की मोस्ट इमोशनल फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है।

वैसे गाने हो और डांस ना हो बॉलीवुड में ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डांस जो है बॉलीवुड की जान है। हर फिल्म में म्यूजिक एंड डांस का एक खास कनेक्शन होता है। क्लासिकल डांस से लेकर एनर्जेटिक पार्टी नंबर्स तक बॉलीवुड ने डांस को सेलिब्रेशन बना दिया। वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स बॉलीवुड

बॉलीवुड के डायलॉग्स भी उसकी ब्यूटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कुछ डायलॉग्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो इमोशंस बन जाते हैं। मेरे पास माँ है, या फिर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इवन तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग्स जनरेशंस तक याद रखे जाते हैं।

बॉलीवुड ने दुनिया भर के इंडियंस को एक दूसरे से जोड़कर रखा। मॉरिशस हो, दुबई हो, लंदन या फिर अमेरिका, हर जगह बॉलीवुड के गाने एंड मूवीज लोगों को अपने देश एंड अपनी कल्चर की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ सिनेमा नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड की असली खूबसूरती उसकी एबिलिटी में है जो हर इंसान के दिल को छू देती है। ये हमें हंसाता है, रुलाता है, इंस्पायर करता है और कभी कभी जीने का नया नजरिया भी देता है। हर गाने में एक याद होती है, हर फिल्म में एक इमोशन एंड हर सुपरस्टार में एक कहानी होती है। इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2 Radio Musti.
1: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
2: राइट.
1: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
2: नदी जमी जते.
1: नदी जमी जते. आह, इट्स सो सेक्सी.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में चल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: वेलकम टू RM2। आता है मुझको
1: प्यार में जल जाना। इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
2: चेक दिस आउट।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, रेडियो मस्ती,
3: हिट म्यूजिक ओनली।
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: वेलकम टू RM2। आता है मुझको
1: प्यार में जल जाना। इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
2: चेक दिस आउट।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, रेडियो मस्ती,
0: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: नहीं है।
1: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
1: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
0: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।